0: गोइंग एशियन गेम्स 2026 और आज के दिन की शुरुआत एक शानदार गोल्ड के साथ हुई है, वो भी एक ऐतिहासिक गोल्ड के साथ दोस्तों. दिस केम इन द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी जहां वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री एट द एशियन गेम्स विनिंग गोल्ड इन द वुमेन्स रिकर्व टीम इवेंट आफ्टर डिफीटिंग द ह्यूज जायंट साउथ कोरिया इन अ थ्रिलिंग फाइनल. वी ऑल्सो सॉ कुमकुम मोहम्मद वॉज द स्टार ऑफ द फाइनल शोइंग रिमार्केबल कंपोजर अंडर प्रेशर. द 17-year-old रिपीटेडली डिलीवर्ड क्रूशियल टेंस वेन इंडिया needed them most, including the decisive shot that sealed the gold medal. Ankita Bhagat provided valuable experience and consistency, while Kirti had moments of pressure during the final, but India's collective effort proved decisive when this was the first time in history that India ever reached the final of this event. Anupam.
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है. और जैसा कंपाउंड आर्चरी में किया था वैसे ही आज रिकर्व में भी हो रहा है. रिकर्व थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म है और आप तो बता ही चुकी हैं स्वर्ण पदक आ गया और एक और स्वर्ण पदक पर पूरी पूरी निगाहें हैं. यह है मिक्स्ड इवेंट जिसमें आज भारत की टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेला. सेमीफाइनल में जापान को 5-3 के स्कोर से हराया और इसी वक्त चल रहा है उसका फाइनल और इसमें पीछे है भारत चीन से और ये बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है. और बल्कि इसमें सारे शूट्स हो चुके हैं, सारे तीर मारे जा चुके हैं और लगता है भारत इसमें अब पीछे रह गया है. 2-4 से पहले पीछे था और अब 3-5 से पीछे हो गया है. यानी रजत पदक, फिर भी एक स्वर्ण पदक एक रजत पदक और इसके अलावा अभी मेंस टीम तो बाकी है.
0: करेक्ट एंड कमेंडेबल स्टार्ट टू द डे. इनफैक्ट भारत के एंगल से रग्बी सेवंस के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों. इंडिया प्रोड्यूस्ड अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस टू डिफीट मलेशिया 26-5 इन द वुमेन्स रग्बी सेवंस पूल ई मैच एट द एशियन गेम्स. भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज व्हाइल टुडू संध्या रानी एंड कुमारी आरती ऑल्सो क्रॉस द लाइन एज इंडिया सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री ओवर मलेशिया.
1: बिल्कुल, और अब हम इसके रिजल्ट को थोड़ा सा आपको और भी बता सकते हैं. इसमें धीरज देव बुमरा जो विश्व में नंबर 1 की पदवी रखते हैं वो थे और साथ में कुमकुम महोद थी. बहुत लड़ाई की, बहुत अच्छी लड़ाई की और हम कहेंगे सेमीफाइनल तक पहुंचना और फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है. तो एक स्वर्ण पदक और दूसरा रजत पदक. इसके अलावा कुश्ती में हम बात करते हैं. कुश्ती में आज बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है. फ्री स्टाइल के मुकाबले थे, भारत के 4 पहलवान थे. सबसे पहले प्रिया 60 किलोग्राम में कजाक की काइजी मेडट से हार गईं और ये चित होकर आई, यानी कि विक्ट्री बाई फॉल मिली मेडट को. और 50 किलोग्राम में दीपांशी वो जापान की यूई सुशाकी के विरुद्ध थी और

0: ये भी टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर यूई ने मुकाबला जीत लिया। और इसके बाद 125 किलोग्राम में रजत राहुल, ये कुश्ती जरूर थोड़ा सा उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वो हार बैठे मुकाबला पॉइंट्स अंकों के आधार पर। लेकिन 65 किलोग्राम में जिस पर सबसे अधिक उम्मीदें थी सुजीत, उन्होंने अफगानिस्तान के उमर सैयद को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर परास्त किया। और इस समय उनका मुकाबला चल रहा है ईरान के अब्बास इब्राहिम के साथ, और ये पहला राउंड है और देखते हैं इसमें क्या होता है। बस इसकी शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में।
1: राइट, गुड न्यूज, वन गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग। नाउ लुक, लेट्स हैव अ लुक एट वॉलीबॉल आल्सो। इंडिया डिफीटेड साउथ कोरिया 3-1 इन द मेंस वॉलीबॉल 5th-8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच। इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23। इंडिया देन क्लोज्ड आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23।
0: बिल्कुल, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर आई है। वॉलीबॉल में भारत ने अपने पूल में सारे मैच जीते थे। भारत वॉलीबॉल में एक अच्छी टीम है, हालांकि 3 कांस्य पदक आते रहे लेकिन इधर करीब पिछले 20 साल से कोई पदक नहीं आया है। और अब वो हार गए थे उसके पश्चात पाकिस्तान से, और अब वो 5वें से 8वें स्थान के लिए क्लासिफिकेशन मैच खेल रहे हैं, जिसमें से पहला मैच उन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-0 से यानी लगातार सेट्स में हरा दिया है। अब 5वें और 6ठे स्थान के लिए उनकी लड़ाई होगी, अगला मैच होगा।
1: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट वेयर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू 3rd प्लेस आफ्टर चाइना हु वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 2 रेसेस। इंडिया हैड इनिशियली फिनिश्ड 4th एट द एंड ऑफ ऑल रेसेस, बट द सबसिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग्स एंड एलिवेटेड द इंडियन पेयर टू द पोडियम। सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट टीम आल्सो।
0: बिल्कुल, समय कम है लेकिन इतना बता दें सबको इंतजार है आज हॉकी का, जिसमें भारतीय लड़कियां स्वर्ण पदक पर निशाना साधेंगी। चीन के विरुद्ध मैच होगा। इसके अलावा बॉक्सिंग में 3 फाइनल्स हैं, तो हमारी अपडेट्स के साथ बने रहिएगा।
1: जी, और जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज भारत की पोजीशन क्या है दिन की शुरुआत पे ऑन द मेडल टेबल, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इंडिया हैज मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द 7th स्पॉट। जी हाँ, 7वें स्थान पर अब भारत आ चुका है। कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 67 मेडल्स हैं, जिसमें 11 गोल्ड, 23 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज है। ऑल थैंक्स टू द फैक्ट दैट आज शूटिंग ने सुबह सुबह हमें एक और गोल्ड दिला दिया। और आपको बता दें, सिर्फ शूटिंग, सॉरी, यस, आर्चरी ने हमें एक और गोल्ड दिला दिया। और आपको बता दें कि आर्चरी में इसके साथ अब 4 गोल्ड हो चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट 5 मेडल्स। और शूटिंग की अगर हम बात करें तो 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 15 मेडल। यानी सुबह सुबह जो आर्चरी ने हमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर दिलाया है, उसकी बदौलत भारत अब 8वें स्थान से 7वें स्थान पर आ चुका है मेडल टेबल पर। और हमारे टोटल मेडल्स भी फिलहाल अब 67 हो चुके हैं, विच इंक्लूड्स 11 गोल्ड। होपिंग दैट द डे टर्न्स आउट इवन मोर बेटर फॉर इंडिया। दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। विल जॉइन यू back at 10:30 a.m. with the live updates of the ongoing Asian Games 2026.
2: Asian Games 2026, Aichi, Nagoya.
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டோம். ஒரு சூப்பரான துள்ளலான பாடல் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: आज दिन की दूसरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। 20वें एशियाई खेलों में दिन क्या शानदार है रहा है भारत के लिए अब तक। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। पहली अपडेट में हमने बताया कि आर्चरी की रेंज से स्वर्ण पदक आया, रजत पदक आया और उसके बाद अब बॉक्सिंग का रिंग लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम महिलाओं के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है और क्या शानदार जीत है उनकी। पिछली बार भी उनके पास पदक था, वो सिल्वर था। इस बार उन्होंने चीन की जी बाओ को परास्त किया। उनके मुक्कों का दम देखा सारी दुनिया ने। क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में ज़रूर थोड़ा मुश्किल से उनको हुई थी, लेकिन आज वो पूरे फॉर्म पे थी और स्वर्ण पदक एक और भारत को।
2: जी, और अगर रेसलिंग की ही बात कर रहे हैं तो इसी न्यूज़ को आगे बरकरार रखते हैं। भारत के सुजीत कलकल ऑल्सो एडवांस टू द मेन्स फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल विद अ डोमिनेटिंग 10-0 विक्ट्री ओवर ईरान्स अब्बास इब्राहिम जदह सवादो की बाय टेक्निकल सुपेरियोरिटी। सुजीत को सिर्फ 30 सेकेंड चाहिए थे ऑफ द सेकेंड पीरियड टू फिनिश द क्वार्टर फाइनल, एडिंग 2 मोर पॉइंट्स टू कम्प्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन, और इसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अब प्रवेश कर लिया। और आपको ये भी बता दें कि सेमीफाइनल का बाउट भी शुरू हो चुका है, जिसका हो सकता है हम आपको अपडेट इसी अपडेट
1: जी,
2: में
1: बिल्कुल मैं तैयार हूँ इसके लिए।
2: तैयार है अरे जरूर।
1: ये उनका मुकाबला हो रहा है जापान के कोतोरो कियोका से और पहला पीरियड में अब बहुत बढ़िया दाम लगाए वहाँ पर सुजीत ने। एक समय तो 5-2 की बढ़त ले ली, लेकिन वहाँ पर चैलेंज किया जापान के पहलवान ने और वो 2 अंक चैलेंज को मान लिया गया, वापस कर दिए गए। 3-2 से बढ़त थी, इसके बाद जापानी ने एक बढ़िया दाम लगाया, 3-3 की बराबरी। मुकाबला बस अभी ख़त्म हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है अंकों के आधार पर सुजीत अब फाइनल में पहुँच गए हैं। कन्फर्मेशन बस होने वाली है।
2: चलिए, थोड़ा इंतजार रहेगा कन्फर्मेशन का उसका। लेकिन टैक्वांडो की दुनिया से आपको बता दें कि भारत का सफर इसके अंदर आकर आज समाप्त हो गया। इंडियाज कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान रीता बक्शेवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स। मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच्ड बिटवीन द 2 कॉम्पिटिटर्स।
1: और इसके अलावा साइकिलिंग में आज तमाम मुकाबले हैं। सुबह से ही वेलोड्रोम जो है गुलजार हो जाता है। आज भारत कई स्पर्धाओं में महिलाओं के ओमनियम में हर्षिता जाखड़ वो 12वें स्थान पर रहीं और कुल 13 लोग ही थे तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। अब पुरुष कीरिन में रोनाल्डो सिंह थे, वो क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई वो भी नहीं कर सके, लेकिन डेविड बेकहम उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया, उन्होंने क्वालिफाई किया और वो पहुंच गए हैं अगले चक्र में। लेकिन इसके बाद रिपेचेज में डेविड ने क्वालिफाई किया है और रिपेचेज में रोनाल्डो को भी मौका मिल गया और रोनाल्डो ने यहाँ पर बढ़िया खेला, 6ठे स्थान पर आए और अब वो सेमीफाइनल चक्र के लिए पहुंच गए हैं। यानी उनकी साइकिल के पैडल अभी चलने वाले हैं भारतीय साइकिलिस्ट के।
2: उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी खबर लेकर आए वो भारत के लिए। आगे बढ़ेंगे सेपेक्टक्रो की तरफ भी दोस्तों। एंड इन द ग्रुप ए मैच ऑफ द सेपेक्टक्रो वुमेन्स क्वाड्रेंट थाईलैंड हैव एब्सोल्युटली डेसिमेटेड इंडिया। जी हाँ, दे टुक द सेकंड सेट बाय अ मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स। दे वर ड्राउन 13-15 by their opponents in the first set as they lost it earlier. India have thus

0: बोर्ड आउट ऑफ द इवेंट आफ्टर लूजिंग ऑल थ्री ऑफ द ग्रुप गेम्स। जी हाँ, भारत का सफर इसके अंदर भी समाप्त हो ही गया।
1: और रेसलिंग में एक खबर और भी है, अच्छी खबर है। दीपांशी हार गई थी 50 किलोग्राम भार वर्ग में आज, लेकिन उनको मौका एक और मिल गया है रेबचेज में, और कंबोडिया की पहलवान के साथ उनका मुकाबला बस इस समय शुरुआत हो गई है। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है।
0: जी, और आपको याद दिला दें कि आज के दिन की शुरुआत सबसे अच्छी खबर के साथ हुई थी, जहाँ पर आर्चरी ने हमें आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रदान किया। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो पहली बार आर्चरी की हिस्ट्री में एशियन गेम्स में ऐसा हुआ है कि भारत की टीम फाइनल के अंदर पहुंची। और हम बात करें वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, जिसने आज हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द गोल्ड, देयर बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया इन अ वेरी थ्रिलिंग फाइनल। वहीं पर अगर हम रिकर्व मिक्स टीम के फाइनल उसकी भी बात करें, फाइनल्स की भी, तो उसमें भी हमने देखा कि भारत ने आज हमें उसके अंदर भी एक सिल्वर पदक ला के दिया। सो रिकर्व मिक्स टीम के अंदर वी वर एबल टू सैटिस्फाई आवरसेल्व्स विद द सिल्वर।
1: और ये और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि कोरिया जो है वो पावर हाउस है। कोरिया 10 बार चैंपियन रहा है, उस टीम को परास्त करना और इस अंदाज से परास्त करना बहुत ही शानदार, लड़कियों ने गजब करके दिखाया।
0: जी, और मिक्स टीम सेमीफाइनल, मिक्स टीम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी गॉट द सिल्वर आउट देयर डेफिनेटली। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर गुड न्यूज ऑफ द डे आल्सो, और शुड आई से a nice news that's coming up away, which is in rugby sevens, where India produced a dominant performance to defeat Malaysia 26-5 in the women's rugby seven pool E match at the Asian Games. Bhumika Shukla scored 3 tries, while Tudu Sandhya Rani and Kumari Aarti also crossed the line as India secured a comfortable victory.
1: Sakshi, बहुत अच्छी बात इसलिए भी है ये क्योंकि रग्बी सेवन का पहला मैच जो कल भारत ने खेला था बहुत बुरी तरह हारे थे, उसको देखते हुए आज उतनी ही अच्छी जीत है। 26-5 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है।
0: Right, medal table पे हो सकता है थोड़ी सी हलचल जरूर मचे, लेकिन the last update that we had was that India was still at the 7th position, लेकिन क्योंकि अब ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि रेसलिंग के अंदर भी हो सकता है मेडल्स आए, तो मेडल टेबल में थोड़ी बहुत हलचल तो मचेगी। हम आपको वो अपडेट अगले अपडेट में ला कर देंगे कि भारत की पोजीशन में क्या उत्थान हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं ऑन द मेडल टेबल। फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक सेइंग गुड बाय, विल बी जॉइनिंग बैक अगेन इन द नेक्स्ट अपडेट एट 11:30 AM।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनुपम पाठक। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। घड़ी में बज रहे हैं 11:30 एंड ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे सो फार इन द लास्ट वन आवर विच इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहाँ मेन्स रिकर्व टीम सेमीफाइनल जो हमारी भारत की जिन्होंने प्रवेश किया था, अब उन्होंने वहाँ पर भी जीत दर्ज करके फाइनल्स में गोल्ड मेडल के लिए अपने लिए जगह बना ली है। जी हाँ, आपको बता दें दैट इंडिया हैव स्टॉर्म्ड इनटू द मेंस रिकर्व टीम फाइनल्स आफ्टर डिफीटिंग ईरान 6-0 इन अ डोमिनेंट सेमीफाइनल। ईरान स्टार्टेड द थर्ड सेट स्ट्रॉन्गली विद 29-30 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड विद अ सुपर्ब 56 टू एज द सेट 56-55। नीरज चौहान हिट अ 10, यशदीप बोगे एडेड अवर 9 एंड धीरज बम्मदेवारा सील्ड द विक्ट्री विद अ क्रूशियल 9। इंडिया हैड अर्लियर वन द फर्स्ट टू सेट्स 58-53 and 56-53 to take a commanding 4-0 lead, and thereby the Indian trio of Dheeraj, Neeraj and Yashdeep will now face South Korea in the gold medal match. और आपको बता दें कि क्योंकि gold medal में अब men's recurve team semi-final जो खेल के अभी प्रवेश करी है, आज दिन की शुरुआत भी archery की टीम ने हमारे लिए बहुत अच्छे से की थी, वहीं महिला recurve archery टीम ने हमें gold medal दिलवाया था और recurve mixed team के semi-finals के बाद भी हमने देखा था कि किस तरह से भारत ने उसमें भी हमें सिल्वर मेडल दिलवाया जो फाइनल्स हुए थे। सो क्योंकि हमारी महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने आज हमें स्वर्ण पदक दिलवाया है, तो चलिए आइए सुनते हैं कि कुमकुम मोहत ने आज क्या कहा।
2: उसमें उम्मीद मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी और मेडल तो आएगा, 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
3: बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात है कि इस स्पर्धा में, रिकर्व की स्पर्धा में आज तीन मुकाबले हैं साक्षी, और तीनों में पदक हैं। एक स्वर्ण आ चुका, एक रजत आ गया और एक स्वर्ण ही आना चाहिए। और भी एक और पदक जिसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था अपनी पिछली अपडेट में, सेलिंग में डिंगी में ICILCA 7 क्लास जो होती है उसकी डिंगी, उसमें नेत्रा कुमानन ने फाइनल रेस 1 और 2 आज थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल थाईलैंड के सोफिया मॉन्टगोमरी को मिला और सिल्वर पदक जो है वो सिंगापुर के पास गया। उनका जो समापन था वो 14 अंक कुल थे, नेट भी 14 अंक थे, हांगकांग की स्टेफनी नॉर्टन के भी 14 ही अंक थे, लेकिन किस्मत वाली रही यहाँ पर नेत्रा इसलिए क्योंकि रिकैलकुलेशन जब होता है अगर बराबरी होने पर, उसमें उनको एक पेनल्टी कम मिली थी और ज़्यादा थी स्टेफनी की, तो यानी ये कांस्य पदक भारत के पास और आया।
1: जी, रेसलिंग की दुनिया से भी आज बहुत अच्छी खबर आई है। सबसे पहली अच्छी खबर जो हमने आपको दी थी दिन में थोड़ी देर पहले, वो ये है कि इंडिया की लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाउजी इन द वुमेन 75 किलोग्राम कैटेगरी एट द एशियन बाउट। लवलीना मेंटेन्ड हर कंपोज्ड अप्रोच थ्रू आउट द बाउट, अलाउइंग बाउ टू कम फॉरवर्ड वाइल रिस्पॉन्डिंग विद इफेक्टिव काउंटर पंचेस। आफ्टर विनिंग द फर्स्ट टू राउंड्स द इंडियन बॉक्सर कंट्रोल द थर्ड राउंड एज वेल टू कंप्लीट अ डोमिनेंट विक्ट्री बाय गोइंग अहेड एंड winning the bout by a unanimous 5-0 decision. आज उनका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो लवलीना बोरगोहेन को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ साथ इट कुडंट हैव बिकम अ बेटर डे फॉर हर बिकॉज द बर्थडे जस्ट बिकेम इवन स्वीटर एंड परफेक्ट फॉर लवलीना बोरगोहेन हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली सेकेंड इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आफ्टर द लेजेंडरी MC मैरीकॉम। द 29-year-old इंडियन डिफीटेड चाइना ज़ियोबा 5-0 इन अ क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट।
3: बिल्कुल, और ये जो लवलीना है इसकी जितनी तारीफ करें सुनहरा उपहार उन्हें आज मिला है। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जिस तरह से उन्होंने खेला था, जिस तरह से बॉक्सिंग की थी, लगातार कॉम्बिनेशन पंचेस लगाए थे, वो तो देखने ही वाले थे। हम बात सेलिंग की कर रहे थे।

0: सेलिंग में और लोग भी हैं, विष्णु सरवनन इस समय मेंडिंगी उसमें कांस्य पदक से चूक गए, वो चौथे स्थान पर आए हैं। और जो विंड सर्फिंग है, आज वैसे पूरे जापान में हवाएं बहुत चल रही हैं, खासतौर से जहाँ जहाँ टूर्नामेंट चल रहा है आर्चरी में हवाओं का बहुत कहर रहा है। विंड सर्फिंग में काव्या कोयलो सातवें स्थान पर हैं ओपनिंग सीरीज में, सीरीज दसवीं की रेस के बाद। और मिक्स्ड सर्फिंग में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र कुमार वो पाँचवें स्थान पर बने हैं। गोल्फ में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि महिलाओं के स्ट्रोक प्ले में प्रवणी उर्स जो हैं वो पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, और दीक्षा डागर और अदिति अशोक के साथ जो भारतीय टीम है वो दूसरे स्थान पर इस समय चल रही है। बस ये बढ़त बनाए रखें। और पुरुषों की बात करें तो वीर अलावत 10वें स्थान पर हैं, सप्तक तलवार 11वें, और पुरुषों की जो टीम है उसमें भारत जो है इस समय छठे स्थान पर चल रहा है। तो गोल्फ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं
1: जी। एंड अ वेरी क्विक अपडेट विच वी लेफ्ट यू इन द लास्ट अपडेट आपके साथ, जब हमने छोड़ा था पिछले अपडेट में, कि भारत के सुजीत खलकर पुल्ड ऑफ अ स्टनिंग अपसेट डिफीटिंग रेनिंग ओलंपिक चैंपियन एंड होम फेवरेट कोटारो क्यू का इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल, और इसके साथ अब वो गोल्ड मेडल के लिए 65 किलोग्राम फाइनल कैटेगरी में कम्पीट करेंगे आज दोपहर 3:45 बजे, टू बी मोर स्पेसिफिक 2:46 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द न्यूज हैज बिकम ऑफिशियल। सुजीत 1:33 ऑन क्राइट scoring the decisive final point after trailing 0-2 in the opening period. The Indian wrestler fought back brilliantly in the second period, scoring 3 points to seal a memorable victory. Here's rooting for Sujit.
0: और उनका final जो होना है वो तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीव के साथ होना है, तो उम्मीद करें एक स्वर्ण पदक और भारत की राह देख रहा है।
1: Right, and a quick update also from wrestling to just finish this off. India's Dipanshi has kept her medal hopes alive after dominating Cambodia's Deet Samnang in the women's 50 kilogram repercharge. She secured a 10-0 victory by technical superiority to book a place in the bronze medal bout. और अब आपको भारत की दीपांशि भी आज दोपहर 3:58 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खेलते हुए अपने बाउट में नजर आएंगी, होपफुली ऑल्सो गेटिंग अस अ पोडियम फिनिश इन दैट। दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है अनुपम पाठक। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, दोबारा एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: तीन पदक आए हैं, एक गोल्ड और दो सिल्वर। हालांकि ये जो पहला सेट था उसकी शुरुआत बहुत अच्छी भारत ने की थी, दोनों बराबर बराबर थे और एकदम आखिरी एरो पर जाकर ये स्थिति आई थी कि मामला बराबरी पर हुआ, वरना भारत जीतता उसको, अंक बराबर रहे। दूसरे सेट में यशदीप ने एक एरो गड़बड़ किया और जैसा आपने बताया आखिरी सेट में नीरज का वो तीर ऐसा भटका। लेकिन आज के लिए ये बात ज़रूर कही जाएगी, जब हवा थोड़ी सी आज तेज़ चल रही थी लगातार, तो हवा के साथ अमूमन लोगों की शिकायत आर्चर्स की रहती है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन प्रदर्शन और अंतिम निर्णय जो आता है वही आपको पदक तालिका पर ले जाता है, पोडियम पर ले जाता है। लेकिन फिर भी रजत बहुत स्वागत योग्य बात है। और इसके अलावा हम बात करें, अभी दो जगह दो बॉक्सर्स हमारे उतरने हैं, दो जगह स्वर्ण पदक की उम्मीद है। उसके अलावा अभी कुश्ती में फाइनल खेलना है नीरज को और कांस्य पदक की भी उम्मीद है दीपांशी से। मैं आपको ताज़ा जानकारी बता दूं, इस समय केनो में कयाक क्रॉस में शिखा चौहान नवे स्थान पर रहकर क्वालिफाई की थी, हमने बताया था। क्वार्टर फाइनल में वो तीसरे स्थान पर आई, क्वालिफाई नहीं कर पाई। प्रद्युम्न सिंह राठौर ने क्वालिफाई किया था लेकिन क्वार्टर फाइनल्स बीच हो चुका है, उसमें वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके और चौथे स्थान पर रहे, जबकि टॉप पहले जो दो स्थान पर आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं।
1: जी, और डिंगी की दुनिया से भी आपको कुछ लेटेस्ट खबर दे दे कि आज इंडियाज नेत्रा कुमानन सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डिंगी सेलिंग इवेंट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फाइट बैक इन द फाइनल रेसेस। आफ्टर अ डिफिकल्ट ओपनिंग रेस नेत्रा बाउंस्ड बैक ब्रिलियंटली टू विन द सेकेंड फाइनल रेस। शी फिनिश लेवल ऑन पॉइंट्स विद हांगकॉन्ग स्टेफनी लुईस नॉर्टन, बट नेत्रा सुपीरियर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट नॉर्टन सॉ हर क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। एंड जस्ट वन क्विक गुड न्यूज दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर एंड हैड शेयर इन द लास्ट अपडेट, की बॉक्सिंग की दुनिया से आज हमें गोल्ड मेडल आ गया। जी हाँ, द बर्थडे गर्ल इंडियाज लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाउजी इन द वुमेन्स 75 किलोग्राम गोल्ड मेडल बाउट एट द एशियन गेम्स, एंड देयरबाय शी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री by becoming the only second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. What a feat, what an achievement, Anubhav.
0: बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात। और जो आपने बात की साक्षी नेत्रा कुमारन की, सेलिंग में भारत गाहे बगाहे पदक लाता रहा है। नेत्रा कुमारन तमिलनाडु से आती हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं, 15 बरस की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की थी। और मज़े की बात क्या ना, जो बड़े लोगों के साथ होता है, कई खेल खेलती थी, टेनिस खेलती थी, स्केटिंग खेलती थी और भरतनाट्यम की डांसर हैं। इसके बाद जब उनके ने फाइनल कर लिया कि नहीं मुझे अब सेलिंग ही करनी है, तो स्पेन में ट्रेनिंग की है, ओलंपिक में खेल चुकी हैं भारत की ओर से, तो यकीनन उनका ये जो कांस्य पदक है बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे चमकते दमकते रंग का पदक है।
1: Indeed, and सेपेक तकरो की दुनिया से भी आपको क्विक अपडेट दे दें कि ग्रुप ए के मैच ऑफ द सेपेक तकरो वुमेन्स क्वाड्रेंट थाईलैंड एब्सोल्युटली डेसिमेटेड एंड फिनिश्ड इंडिया। दे टुक द सेकेंड सेट बाय मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स। फर्स्ट इनिशियली वी ऑल्सो सॉ दैट इंडियंस वर ड्राउन 13-15 बाय थाईलैंड इन द फर्स्ट सेट एज दे लॉस्ट इट अर्लियर। इंडिया दस हैव बोर्ड आउट ऑफ द इवेंट आफ्टर लूजिंग ऑल ऑफ देयर ग्रुप गेम्स। तो सेपेक तकरो के अंदर भारत का सफर यहाँ पर आकर समाप्त तो हो गया।
0: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा क्षण है, अविस्मरणीय, जो लोग भी इसको वहाँ पर उपस्थित हैं जिनको जानकारी मिल रही, लवलीना बोरगोहेन के गले में स्वर्ण पदक इस समय डाला जा रहा है। पदक सेरेमनी जो होती है वो हो रही है, भारत का राष्ट्रगान की जो धुन है बस वो गूंजने वाली है। आपने देश का नाम रोशन किया है लवलीना, और आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। साइकिलिंग का ताज़ा जो समाचार है वो ये है, डेविड बेकहम जो रिपेचेस में होकर पहुँच गए थे, क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने मेंस पुरुषों की कायरन स्पर्धा में साइकिलिंग में, वो पाँचवें स्थान पर आए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और इस समय पुरुषों की मेडिसिन प्रतियोगिता जो है स्पर्धा वो चल रही है।
1: जी, अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज ऑन द टेलीविजन एज वी विटनेस द हिस्टोरिक गोल्ड बाय लवलीना बोरगोहेन, जस्ट वेटिंग मोमेंट्स अवे फ्रॉम द नेशनल एंथम अपराइट आवर लव।
0: साक्षी, जन्मदिन पे इससे बेहतर तोहफा चाहोगी क्या?
1: बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो सकता है अनुपम, कि आपको आपके जन्मदिन पर मौका मिले कि आप अपने देश को और अपने देशवासियों को, अपने परिवार के जनों को गौरवान्वित महसूस करवा सकें थ्रू योर अकम्पलिशमेंट्स। व्हाट बेटर देन दैट। ऑन दैट नोट, इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक फॉर नाउ सेइंग गुड बाय। विल बी जॉइनिंग यू राइट बैक एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
0: नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2000

0: और आज का दिन वैसे भी पदकों के हिसाब से खासा अच्छा रहा है, बल्कि जैसे जैसे एशियन गेम्स अपने समापन की ओर बढ़े हैं हमारे पदकों की संख्या एकदम से बढ़ी है। खासी आज बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक आ चुका है, कुश्ती में एक स्वर्ण पदक की उम्मीद है, बॉक्सिंग में दो स्वर्ण पदकों की और उम्मीद है, हम अपनी अगली अपडेट्स में बताते रहेंगे। इसके अलावा आर्चरी में स्वर्ण पदक आ चुका है, दो रजत आ चुके हैं, अभी एक कांस की आपने बात की, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हाँ, सेलिंग में नेत्रा कुमारन ने एक कांस्य पदक हासिल किया है। इस बीच हम ताज़ा खबर आपको बता दें, साइकिलिंग में जो डेविड बेकहम रिपचेस से पहुंचे थे उनका सफ़र समाप्त हो गया है और अब वो सातवें से बारहवें स्थान के लिए अपनी साइकिल में पैडल में ताकत लगाने का प्रयास करेंगे। पुरुषों के मेडिसन के मुकाबले भी चल रहे हैं। इस समय भारत आठवें स्थान पर है, जिसमें हर्षवीर सिंह शेखों और विश्वजीत सिंह की जोड़ी है। गोल्फ में बहुत अच्छी खबर है, तीसरा राउंड चल रहा है लड़कियों की ओर से है, हमारी जो टीम है प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर पहुंची हुई है। और महिलाओं के स्ट्रोक प्ले की बात करें तो राउंड थ्री में प्रणवी उर्स पहले स्थान पर इस समय बनी है, बस ये लीड अपनी बनाए रखें ये दुआ करेगा हर भारतीय प्रेमी।
1: जी, और वुमेन्स स्किफ इवेंट के अंदर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू द थर्ड प्लेस आफ्टर चाइना हु डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम टू रेसेस। इंडिया हैड इनिशियली फिनिश्ड फोर्थ एट द एंड ऑफ ऑल रेसेस बट द सबसिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग्स एंड एलिवेटेड द इंडियन पेयर टू द पोडियम। वहीं रग्बी सेवन्स के अंदर आज भारत ने एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ मलेशिया को 26-5 से हराकर वुमेन्स रग्बी सेवन पूल ई मैच में जीत हासिल कर ली। भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज वाइल टूडू संध्या रानी एंड कुमारी आरती आल्सो क्रॉस द लाइन एज इंडिया सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री।
0: बिल्कुल, और रग्बी सेवन में लड़कियों को अच्छा करते हुए देखना इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है, रग्बी सेवन बहुत ज्यादा ताकत वाला, बड़ी स्पीड वाला और कहते ना भिड़ंत वाला खेल है, तो उसमें अगर लड़कियां पहला मैच तो उन्होंने खासा खराब खेला था, बहुत बुरी तरह हारी थी, लेकिन आज उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और हम आपसे गोल्फ की बात कर रहे थे, पुरुषों में हाल बहुत अच्छा नहीं है, युवराज संधु हैं, वीर अहलावत हैं, सब तक तलवार हैं, तीसरा राउंड इसमें भी हो रहा है इस समय, और वीर अहलावत 10वें स्थान पर हैं, सब तक उनके ठीक पीछे 11वें स्थान पर हैं, और युवराज संधु जो हैं वो 23वें स्थान पर हैं, और जो टीम है वो मिलाकर 6ठे स्थान पर है। तो लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें तो साक्षी सारी निगाहें रहने वाली हैं हॉकी के मैच पर, जहाँ पर एक स्वर्ण पदक की उम्मीद है, भारत उसमें उतरेगी, भारत की लड़कियां उतरेंगी स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने के लिए। इसके अलावा दो बाउट्स जो होनी है, ज़बरदस्त बाउट्स होने की संभावना है बॉक्सिंग में, और हरियाणा के हैं दोनों, परवीन हुडा जो हैं वो रोहतक से आती हैं, अंकुश पंघाल जो हैं हिसार से आते हैं, साउथ पा हैं, और जो लेफ्ट हुक लगाते हैं ना, तो उसको देखने की बात ही अलग होती है रिंग में, बस देखें अच्छा करें, पहले कबड्डी खेला करते थे बाद में बॉक्सिंग में आ गए।
1: यस, तो आपको आज देखने को मिलेंगे दोपहर 2:15 से दो बॉक्सिंग के बाउट्स और रेसलिंग के भी दो बाउट्स। लेकिन अभी अगर आपको एक और अपडेट दे दे तो टैक्वांडो की दुनिया से है, जहां कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान रीता बाक्शीवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स। मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच बिटवीन द टू कॉम्पिटिटर्स। एंड ऑफ इंडियाज कैंपेन इन दिस स्पोर्ट विद इट। सो कशिश मलिक के इस हार के साथ भारत का टैक्वांडो सफर भी समाप्त हो गया है। एंड ए क्विक ग्लांस थ्रू हाउ द मेडल टेबल नाउ स्टैंड्स, भारत की पोजीशन इस वक्त है 6ठे स्थान पर इन द मेडल टेबल। हमारे पास कुल मिलाकर अब 72 मेडल हो गए हैं, जिसमें हमारे पास हैं 12 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, एंड थैंकफुली दिस इज अ मच मोर इम्प्रूव्ड स्पॉट दैट इंडिया प्रेजेंटली होल्ड्स कंपेयर टू वेयर वी वर यस्टरडे ऑन द 8th वन, लेकिन 8वें से 6ठे पे, और उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे कदमों के साथ ये सफर चौथे तक भी समाप्त हो सके।
0: पिछली बार चौथे पे था, लगभग उसके नजदीक तो हम पहुंच ही सकते हैं, और भी इसमें दीपांशी भी कोशिश कर सकती है, लगभग 4 बजे के आसपास उनकी कुश्ती होगी, और सुजीत पर तो सबकी निगाहें होंगी।
1: जी, और इसके साथ अब मुझे साक्षी मांडवाल और अनुपम पाठक को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोबारा एक बार दोपहर के 3:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू एंड गुड बाय।

0: पतंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दिवांशु पटेल।

0: दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का, लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
0: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का, लिखते हैं,
1: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
0: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानी और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
1: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
0: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
1: जी,
0: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
1: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
0: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
1: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
0: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
1: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे,
0: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रतापूर्वक साफ इनकार कर दिया
1: जी।
0: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
1: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
0: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था।
1: जी।
0: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
1: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
0: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
1: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
0: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है, और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए
1: जी,
0: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
1: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
0: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
1: तो श्रोताओं, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
0: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
1: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक

0: नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखे कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

0: यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
2: ये अचकन देशी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
2: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
2: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
1: जी बापू।
2: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
2: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए।
1: मजदूर रहेंगे उसमें,
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
1: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
2: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
2: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। हाँ।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने

0: बिल्कुल सर।
1: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल की लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो।
2: मुझे भी लीमू दो ना।
1: ये लो।
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी?
1: बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
4: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉलस्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
1: अरे बापू जी के आने का समय आने वाले हैं। हाँ हाँ, टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट।
2: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
1: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
2: क्या?
1: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
2: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
1: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
2: ठीक है चंपा, ठीक।
3: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर काट।
2: हाँ, मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
1: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियाँ इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
2: नमस्कार बापू।
3: प्रणाम बापू।
4: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
2: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
1: बापू सब्जियां काट रहे थे।
4: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
1: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
4: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
1: जी बापू।
4: अच्छा जाओ।
1: जी।
4: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
2: जी, जी।
1: चलो चलते हैं। जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे, तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
3: बापू बापू ये देखिए।
4: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
3: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं, दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
4: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
3: जी।
4: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
3: हाँ।
4: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए, उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
3: जी बापू।
4: हाँ, समझ गई ना?
3: जी।
4: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
3: जी बापू धन्यवाद।
0: साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
5: अरे बापू

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में

0: FM Rainbow 102.6 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
1: ஏசியன் கேம்ஸ் 2026 ஐஜி நகோயா.
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और हम लेकर आ गए हैं घड़ी के 3:30 बजे के अभी के ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स. और लेटेस्ट अपडेट्स में आपको बता दें कि मेडल्स की आज बौछार हो रही है, खास तौर से गोल्ड मेडल्स की फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव. अगर बात करें तो रेसलिंग के अंदर द गोल्ड हैज केप्ट ऑन जस्ट बींग एडेड, बिकॉज रेसलिंग में हमने देखा कि किस तरह से आज दिन की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद भी हमारी तरफ से जहां दीपांशी ने अभी भी मेडल होप्स रखे थे जारी, वही हमने देखा कि सुजीत कलकल ही वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 किलो फाइनल बाय डिफीटिंग इस तजाकिस्तान ओपोनेंट 10-9. एक बहुत सॉलिड कमबैक इन्होंने किया, बिकॉज जहां ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पीछे थे, जी हां 2-9 से गैपिंग थी, वहीं पर लास्ट में हमने देखा वन ऑफ द कमबैक्स दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन ईयर्स टू कम, जो सुजीत कलकल ने आज कमबैक किया और भारत को रेसलिंग में 65 किलोग्राम के मेंस फ्रीस्टाइल 65 kg फाइनल के अंदर गोल्ड दिला दिया. मेरे साथ है अनुपम पाठक. एंड अनुपम, द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे दैट हैज जस्ट स्टार्टेड फॉर इंडिया हैज बीन रेसलिंग.
3: आज का दिन ही बहुत अच्छा है. देखिए उस दिन हम लोग कितने खुश थे कि कंपाउंड आर्चरी में 3 गोल्ड मेडल आए हैं. आज का दिन तो उससे भी बेहतर है, 3 गोल्ड मेडल, हैट्रिक लगी है बॉक्सिंग में, कुश्ती में गोल्ड मेडल आया. और अब मैं भी सुजीत की जो बाउट देखी है ना, तो मन कर रहा है खाली उसी की बात करूं. इतनी कठिन बाउट, 2-9 से पीछे हैं आप, एक अंक और भी आप पीछे हो गए, गंवा बैठे तो आपके हाथ से बाउट निकल जाएगी. उस समय भी जो लड़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं, जूझना जानते हैं, वो दिखाया, लेग अटैक किया, एक के बाद एक 3 मूव बनाए, 6 अंक कमाए, चौथा मूव उन्होंने ऊपर से बनाया, उसमें अंक कमाया, 8 अंक एक साथ और 10-9 से अंकों के आधार पर विजय. विश्व नंबर 2 हैं तो भाई इसीलिए हैं, गजब हैं ये. और भिवानी की कहते हैं ना, बॉक्सर्स वहां से आते हैं, बॉक्सिंग की फैक्ट्री है, पहलवान भी वहां से वैसे ही आते हैं.
2: क्या
3: बात है. तो बॉक्सिंग की बात करते हैं. अंकुश पंघाल ने हैट्रिक पूरी की है, 3रा स्वर्ण पदक दिला दिया है भारत को, कोरिया के किम मिन सियांग को परास्त करके. और ये भी खासी मजबूत फाइट रही, बहुत तगड़ी बाउट थी. अंकुश साउथपा है और साउथपा का जो पंच होता है देखने में बड़ा दर्शनीय होता है. सियांग को उन्होंने पहले राउंड में ही पीछे कर दिया, बहुत तेज उन्होंने अटैक किया और 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से उन्होंने पहला राउंड जीता. दूसरे में सियांग ने कोशिश की प्रत्याक्रमण करने की, लेकिन खास बात हमने जो देखी, अंकुश बिल्कुल अपना गार्ड नीचे करके खेल रहे थे, बिल्कुल ओपन गार्ड खेल रहे थे. आओ मुझ पे अटैक करो, मुझ पे अटैक करोगे तो मैं बताऊंगा कि सीधे पंच कैसे मारे जाते हैं. दूसरा राउंड 5-0 यानी कि सर्वसम्मत से सारे जजेस ने उनके पक्ष में किया. इसके बाद तीसरे में तो उनको बस रिदम बनाए रखना था, समय बिताना था, उन्होंने वो किया. लेकिन ये दिखाते हुए कि देखो मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूं, मेरी आदत है आक्रमण करना. और स्प्लिट डिसीजन जरूर रहा, लेकिन कुल मिलाकर बहुत शान के साथ 3रा स्वर्ण पदक बॉक्सिंग में भारत का, गजब का दिन आज.
2: जी, और आपको ये भी बता दें कि बॉक्सिंग की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो परवीन हुड्डा भी आज कमाल का बाउट खेल गई, बिकॉज उन्होंने भी शी हेल्ड हर नर्व्स इन अ क्लोजली फॉट फाइनल अगेंस्ट चेन नियन चेन एंड द चाइनीज ताइपाई. बॉक्सर स्टार्टेड अग्रेसिवली इन द फाइनल राउंड बट परवीन रिस्पॉन्डेड विद क्विक कॉम्बिनेशंस एंड इफेक्टिव काउंटर पंचेस एज द बाउट वेंट डाउन टू द वायर. द इंडियन बॉक्सर डिड इनफ टू एज द कॉन्टेस्ट, विनिंग बाय अ 3-2 स्प्लिट डिसीजन एंड सिक्योरिंग द गोल्ड मेडल इन द वुमेन 65 kg कैटेगरी. जी हाँ, परवीन हुड्डा भारतीय बॉक्सर्स में वो तीसरी महिला बॉक्सर बनी है टू विन द एशियन गेम्स बॉक्सिंग गोल्ड आफ्टर मैरी कॉम. और याद दिला दे आपको आज जब लवलीना बोर्गोहेन भी बॉक्सिंग के अंदर ही 75 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया. तो लवलीना बोर्गोहेन बनी दूसरी महिला बॉक्सर जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया आफ्टर मैरी कॉम. और तीसरी ऐसी बॉक्सर जो बनी है वो है परवीन हुड्डा. सो आज मेडल्स की बरसात हो रही है.
3: बिल्कुल, और परवीन रोहतक की रहने वाली हैं. और खास बात ये रही, अगर देखा जाए तो सबसे कठिन बाउट उन्हीं की रही, स्प्लिट डिसीजन भी रहा और दोनों मुक्केबाज बहुत चपल थे, बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन परवीन ने अपनी लंबाई का भी फायदा उठाया और जो फुर्ती होती है. और इसके अलावा जो कोर्ट में आप एक

0: सफलता के साथ मूव करते हैं रिंग में, उसका उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। अंततः ये अबाउट उनके नाम रही और क्या कहना। हाँ, एक चीज आप साक्षी मुझे बता रही थी कि जो सियांग थी शायद उनको उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया था।
1: जी, शी इज बीन अ कैंसर पेशेंट। हम बता दें अपने सारे ही लिसनर्स को भी कि ये कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं और उस फाइट के बाद, कैंसर को फाइट करने के बाद, शी इज बीन एबल टू नाउ मेक अ कम बैक। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि बहुत ही स्ट्रांग डोमिनेशन के साथ यहां पर आप कह सकते परवीन हुड्डा ने इनको डिफीट किया है, बिकॉज चेन नियन चेन हैज बीन अ कैंसर पेशेंट सर्वाइवर और उन्होंने पेरिस में इनफैक्ट ब्रॉन्ज भी जीता था। लेकिन उसके बाद अब जो इन्होंने कमबैक किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट पुट अप करी, बट एट द एंड ऑफ द डे शायद आज गोल्ड इनकी किस्मत में नहीं था, हमारी भारतीय बॉक्सर की किस्मत में था, इसलिए स्प्लिट डिसीजन से परवीन हुड्डा ने 3-2 से उसको प्रणाम कर लिया। बट कूडोज टू द चेन नियन चेन ऑफ चाइनीज ताइपाई जिन्होंने आज इतनी अच्छी फाइट पुट अप करी।
0: तो अब बस एक ही सपना है, हॉकी में भारतीय लड़कियां आए। दो लड़कियों ने पदक दिलाया, एक लाल ने दिलाया है, अब लड़कियां आए और एक पदक स्वर्ण पदक और लेकर।
1: लेट्स होप फॉर दैट बिकॉज द मैच इज ऑल सेट टू स्टार्ट। लेकिन उससे पहले बिफोर वी एंड दिस अपडेट, अ क्विक लुक ऑन टू द मेडल टेबल ऑल्सो। भारत अब पांचवें स्थान पर आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, 75 टोटल मेडल्स के साथ 15 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज। देखकर ये फिगर्स अब थोड़ी सी खुशी हो रही है क्योंकि मेडल टेबल में भी भारत का स्थान अब धीमे धीमे करके ऊपर आ रहा है। हमसे ऊपर है उज्बेकिस्तान जिनके पास इस वक्त 17 गोल्ड है, लेकिन कुल मेडल उज्बेकिस्तान के भारत से कम है, 60 है। लेकिन क्योंकि भारत की अभी 15 गोल्ड है, उज्बेकिस्तान के 17, तो इसलिए भारत अभी पांचवें स्थान पर है। नंबर एक पे चाइना बना हुआ है, नंबर दो पे जापान है, तीसरे नंबर पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एंड उम्मीद करेंगे कि भारत एशियन गेम्स का यह सफर ऑफिशियली जब समाप्त करे तो चौथे स्थान पर करे, लेकिन फिलहाल तो रियल टाइम में मेडल टेबल पर भारत का है पांचवा स्थान इस वक्त के लिए। अभी के लिए फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और अनुपम पाठक को दीजिए इजाजत। हम आपसे दोबारा दोस्तों मिलेंगे शाम के 4:30 विद द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। फॉर नाउ इट्स गुड बाय,
0: नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரம் கேட்டீர்கள். மணி 11 ஆயாச்சு, கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க எஃப்எம் ரெயின்போ 102.6. கேட்க இருக்கிறீங்க பொதிகை தும்பி. சித்ராக்கா,
4: என்னமா சுபகலா,
3: இன்னைக்கு அப்டேட்னால வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம நேயர்களை எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு.
4: ஆமா, 4:11 வரைக்கும் ஆயிடுச்சு டைம்,
3: அதனால வந்து லேட்டா இப்ப நேயர்கள் வருவாங்க. சீக்கிரமா பேசணும் அப்படின்னு ஆர்வத்தோட நேயர்கள் வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க, எடுத்து பேசிடுவோம். அவங்க
4: பேசலாம்
3: நிகழ்ச்சியில வேற யாரும் கலந்துக்கணும், புதுசா கேட்கறவங்க யாராவது கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா 0462-256-1133 அப்படிங்கிற எண்களுக்கு அழைக்கலாம். நம்ம நிகழ்ச்சியில பேசக்கூடிய முதல் நேயர், வணக்கம்.
4: ஹலோ, வணக்கம்.
5: வணக்கம் மேடம்.
4: வணக்கம், யார், எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க? வானரமுட்டில இருந்து நம்பிராஜ். நம்பிராஜ், நலமா இருக்கிறீங்களா?
5: நல்லா இருக்கேன்,
4: நீங்க இருவரும் நல்லா இருக்கிறோம்.
3: சரி, என்ன ஒரே மழையா அங்கெல்லாம்?
5: இங்க மழை இல்ல, அப்படி மூடாப்பா இருக்கு. காலையில இருந்து வெயிலும் இல்ல, புழுக்கமும் இல்ல,
3: என்னன்னே சொல்ல முடியல. அது ஒரு தனிப்பட்ட நிலவரமா இருக்கு.
5: சென்னையில இருந்து எங்க அத்தை சொன்னாங்க, சரியாத மழை ஒரு 3 கழிச்சு நீங்க இருக்கு அப்படின்னு.
4: ஆமா, பழையங்கட்டுல சும்மா வெளு வெளுன்னு வெளுத்துருச்சு.
5: கண்டிப்பா.
3: சரி,
5: எல்லாருக்கும் பேசும்.
3: கண்டிப்பா. இப்ப உங்ககிட்ட நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்களா, நான் கேக்கவா?
5: முதல்ல நீங்க கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் கேக்குறேன்.
3: சரி, இன்னைக்கு வந்து உங்களை நடிக்கதான் வைக்க போறேன். சரி, ஒரு ஒரு சூப்பரான டைலாக், ஃபேமஸான டைலாக், அதை காமெடி ஆக்கி விட்டுட்டோம் இன்னைக்கு எல்லாருமே. அந்த டைலாக் தான் இது. ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நடிக்கத்தான் செய்தேன் கோபால், உங்கள் தூய்மையான அன்புக்கு முன்னால் என் நடிப்பு தோத்து போச்சு கோபால், தோத்து போச்சு கோபால். இந்த டைலாக்
4: கோபால் கோபால்.
3: ஆமாம், இந்த இதை வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்ல போறீங்கன்னா, ஒரு கோபமாக சொல்ல போறீங்க, அடுத்து வந்து அழுகையா அழுதுகிட்டே சொல்ல போறீங்க, ஏற்கனவே அவங்க அழுதுகிட்டே தான் பேசுவாங்க, நீங்க ஒரு சோகமா சொல்லணும், அடுத்து சிரிப்பா சொல்லணும்.
4: அதனால சரோஜா தேவியே கண்ணுக்கு முன்னாடி
3: ரெடி.

0: हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अनुपम पाठक. हम लेकर आ गए आपके लिए ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन की कि कैसा रहा अभी तक का सफर. तो आपको बता दें कि वॉलीबॉल के अंदर भारत ने साउथ कोरिया को 3-1 से इन द मेन्स वॉलीबॉल 5th to 8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच में हरा कर जीत दर्ज कर ली. इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23. इंडिया देन क्लोज द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23.
1: और अब पांचवें छठे स्थान के लिए भारत को मुकाबला करना होगा. लेकिन इस समय सारी निगाहें जो भी खेल प्रेमी हैं उनकी इस बात पे जमी है कि क्या होगा जब हॉकी का मैच शुरू होगा और जब ख़त्म होगा तो स्कोर लाइन क्या होगी. हर एक के मन में दिल में तमन्ना यही है कि भारत की लड़कियां एक स्वर्ण पदक और लेकर आएं. और आज के दिन की जैसे शुरुआत हुई थी स्वर्ण पदकों की झड़ी के साथ, एक के बाद एक के बाद एक स्वर्ण पदक आए हैं, तो भारत की लड़कियाँ हॉकी में भी स्वर्ण पदक लेकर आएँ. शुरुआत हो गई है, अभी अभी बस सीटी बजी है, लड़कियों ने खेलना शुरू कर दिया है और एक मिनट हुआ है. जाहिर सी बात है स्कोर 0-0 है. अभी तक कोई भी मूव नहीं बना है इस समय तक किसी भी टीम की ओर से.
0: राइट, होपिंग दैट इंडिया पुट अप अ गुड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट चाइना, बिकॉज चाइना विल नॉट प्रूव टू बी एन ईजी कॉम्पिटिटर टूडे, स्पेशली इन द फाइनल. बट क्योंकि आज अनुपम ने बताया कि किस तरह से दिन की शुरुआत रही, मेडल्स की बौछार होती रही है आर्चरी में. आज हमने देखा शुरुआत हुई दिन से जहाँ वुमेन्स रिकर्व टीम हमारे लिए गोल्ड लेकर आई. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेन्स रिकर्व टीम फाइनल्स के अंदर भी हमें सिल्वर मेडल आज मिला. वहीं अभी रिसेंटली कंक्लूडेड रेसलिंग बाउट्स में सुजीत कलकल वॉज अप अगेंस्ट अब्दुल मजीद कुदीव हु इज फ्रॉम तजाकिस्तान इन द मेन्स फ्री स्टाइल 65 kg फाइनल, वे सुजीत कलकल बॉट इंडिया द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग इज तजाकिस्तान ओपोनेंट 10-9, मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक बींग 9-2 डाउन. जी हाँ, 9-2 से पीछे थे और वहाँ से कम बैक करके फाइनली ही वॉज एबल टू डिफीट इज तजाक ओपोनेंट 10-9. वॉट बेटर दैन दैट. एंड ऑल्सो लेट्स टेल यू ऑल दैट अभी दीपांशी ऑल्सो हैज केप द मेडल होप्स फॉर इंडिया अप एंड अलाइव बिकॉज शी हैड बीन डोमिनेटिंग Cambodia's Deet Samnang in the women's 50 kg repechage. She secured a 10-0 victory by technical superiority earlier in the day to book a place in the bronze medal bout. और उस उनका भी अब bout आने वाला है थोड़ी ही देर में दोस्तों, at 3:58 PM Indian Standard Time. So here's hoping and keeping the fingers crossed. Anupam, that Dipanshi should be getting us a bronze medal tonight.
1: बिल्कुल आ सकता है और आज वो lucky भी रही हैं इस मामले में कि जापान की सुसाकी मुई से उनका मुकाबला हुआ था, पहले ही जो उनकी bout थी वही हार गई थी आज वो. लेकिन 50 kg के इसमें दीपांशी को अगर आपने देखा है क्या, लगता है इतनी छोटी सी बच्ची 16 साल की लड़की और वो कमाल करके दिखा

0: रही है इस समय देश की सबसे उभरती खेल प्रतिभाओं में अगर आप गिनती पे गिनिए नाम, उंगलियों पर गिनने की कोशिश करिए तो उसमें दीपांशी का नाम आता है। तो जो जापान की पहलवान थी वो पहुंच गई फाइनल तक, तो फिर मौका मिला रिपेचैज में दीपांशी को, जहां उसने कोई चूक नहीं की और ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसका मुकाबला होना है। लगता है मुझे इस हॉकी का मैच जब तक ख़त्म होने वाला होगा तब तक शायद वो बाउट भी हो जाए। और आपने सुजीत की बात की, जी सुजीत कलकल की बात तो हम बार बार बार बार करना चाहेंगे। आज सबको लगने लगा था, हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद ये बाउट तो सुजीत के हाथ से गई। 0-2-9 से पीछे था, इसके पहले 8 अंक हो चुके थे और उसको क्या करेगा। लेकिन एक ही आदमी था जिसको भरोसा था, नहीं अभी मैं वापसी कर सकता हूँ, एक भी अंक और गंवाते तो फिर मामला पलट जाता। लेकिन उन्होंने वो एक अंक आने ही नहीं दिया और एक के बाद एक वो दांव चले, वो मूव किए पैर के ऊपर, ख़ास तौर से उनके जो 3 आक्रमण उन्होंने किए थे जिसपे 2-2-2-6 अंक उन्होंने कमाए, कुल मिला के एक साथ उन्होंने 8 अंक एक के बाद एक कमाए। और जब मुकाबला समाप्त हुआ उस समय उनका हाथ ऊपर किया गया, स्वर्ण पदक, गजब बाउट, गजब कुश्ती। हमें याद आ रही थी ये बजरंग पुनिया, ये भी इसी 65 किलोग्राम भार वर्ग में होते थे, उसके पहले योगेश्वर दत्त। तो ये जो एक सिलसिला है, एक से एक बेहतरीन पहलवान निकालने का, बजरंग पुनिया की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आगे निकाला है।
1: Right, and in boxing, very quick updates coming to you, the best news of the day for all our listeners who are tuning into Akashvani right now, ki Bharat ki Lovlina Borgohain also bagged the gold medal by defeating China's Bao Zi in the women's 75 kilogram gold medal bout at the Asian Games today. A beautiful birthday present for the birthday girl, who also scripted history by becoming only the second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. Unke saath saath Parveen Hooda also held a nerve in a closely fought final against Chen Nien Chen, and she was also able to win her bout by a 3-2 split decision and secured the gold medal in the women's 65 kilogram category. And then finally we saw Ankush Pangal also up against Kim Min Seong in the men's 80 kilogram final bout, where he was able to defeat him straight down 4-0 and thereby bring in the gold medal for India.
0: Or बहुत सुनहरा क्षण है, इसी समय अंकुश पंघाल के गले में स्वर्ण पदक पहनाया जा रहा है और राष्ट्रगान की धुन बज रही है जापान में।
1: With that, it's a wrap from me, Sakshi Mandwala and Anupa Patak. For now, we'll be tuning in back again at 5:30 p.m. with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026. For now, thank you so much for tuning in. Goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரம் கேட்கலாம்.
1: साक्षी मांडवाल मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक एंड द बिग न्यूज़ जो हम दोनों आपके लिए अभी लेकर आ रहे हैं वो ये है कि भारतीय महिलाओं का फाइनल गोल्ड मेडल का मुकाबला आज चल रहा है भारत और चाइना के बीच में।
2: जी बिल्कुल, जिस समय हमने अपनी पिछली अपडेट खत्म की थी उसी समय शुरुआत हुई थी इस मुकाबले की। भारत स्वर्ण पदक की तलाश में, जो उसने आखिरी बार 1982 में जीता था, वहीं चीन है डिफेंडिंग चैंपियन। भारत पूरी ताकत लगा दे रहा है कि चीन को आगे न बढ़ने दे, और मजे की बात कह रही है आज लगता है जो किस्मत की देवी होती है वो भी मेहरबान है, लेकिन वो मेहरबान उन पर होती है जो मेहनत करते हैं, और भारतीय टीम पूरी मशक्कत के साथ इस मैच में बने रहने का प्रयास कर रही है। हुआ यह है कि पहले क्वार्टर में ही बहुत शानदार मौका मिल गया भारत को, और भारत ने कोई चूक नहीं की, और लाल रंग सियामी ने अब जो अपना 200वां मैच खेल रही हैं आज, उन्होंने एक रिकर्व पास पर क्या ज़बरदस्त शॉट लगाया जो किसी भी गोलकीपर को रोकना बहुत मुश्किल होता, और भारत 1-0 से आगे हो गया। उसके बाद से भारत डिफेंस में ज़्यादा है, उतने मूव नहीं बना रहा है, चीन पूरी कोशिश कर रहा है। 5 पेनल्टी कॉर्नर चीन को मिल चुके हैं, भारत के हिस्से में सिर्फ एक आया है, और आप विश्वास करेंगे दूसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला चीन को, और उसको सविता पूनिया ने एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अकल्पनीय सा सेव करके दिखाया, जैसे उनको पता था कि ये शॉट कहाँ आने वाला है और किस जगह आएगा। अपने ग्लव्स में गेंद को रोका और चीन को बराबरी करने से रोक दिया। उसके बाद से चीन लगातार हमले कर रहा है, लेकिन भारत अपनी इस लीड को बरकरार रखे हुए है। पोजिशन चीन के पास ज़्यादा है, लेकिन स्कोर लाइन भारत के पक्ष में। अब हाफ टाइम हो चुका है, और दूसरे हिस्से में यानी जो तीसरा क्वार्टर होता है उसका भी आधा वक्त हो चुका है। लीड अभी भी 1-0 चीन।
1: Yeah, hoping that the stars align today for the Indian hockey women's team and that we are able to get the gold in this. All eyes are right now on the screen and hopefully in the next maximum 30 minutes, 20 to 25 minutes, we'll get to have the result. लेकिन आपको ये बता दें क्योंकि आज के दिन का ये गोल्ड का मुकाबला है, तो आज काफी सारे पदक भी भारतीयों के नाम लगे हैं अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स में। आर्चरी के अंदर हमने देखा कि कैसे वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम आज गोल्ड मेडल लेकर आई, हमारे लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो भारत इस तरह के इवेंट के फाइनल्स में भी पहुंचा। मैं बात कर रही हूं वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। वहीं रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेंस रिकर्व टीम फाइनल के अंदर आज भारत को 2 सिल्वर भी मिले, एंड द अमेजिंग थिंग हैज बीन कि डिंजी के इवेंट में भी यानी सेलिंग के इवेंट में भी भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया नेत्रा कुमानन ने। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैड अदर इवेंट्स इन विच द मेडल्स केप्ट ऑन पोरिंग इन। इन बॉक्सिंग वी हैड इंडियाज लवलीना बोरगोहेन हु गॉट the gold for India in the 75 kilogram category defeating China's Bao Zi, and then uske baad humne dekha Parveen Hooda bhi hamare liye aaj gold lekar aayi in by a split decision of 3-2 that went in favor of the Indian. And finally, we had Ankush Pangal, who was up against Kim Min-seong in the men's 80-kilogram final, aur uske andar bhi aaj Bharat ko gold medal mila. To overall, Anupam, एक अभी मैंने छोड़ दिया इवेंट रेसलिंग का आपके लिए, लेकिन दिन बहुत खूबसूरत रहा है।
2: बहुत खूबसूरत दिन, आज पदकों के हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया दिन रहा है, और ये जो स्वर्ण पदक है ये सुजीत कलकल ने दिलाया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती में, और क्या ज़बरदस्त उन्होंने मैच खेले, एक के बाद एक 4 बाउट जीते, फाइनल में पहुंचे, और उसके पहले सेमीफाइनल में उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया। शायद उनकी वो कसक दूर हो गई होगी जिसमें वो ओलंपिक क्वालिफाई करने में बस किस्मत की वजह से चूक गए थे, एक बार तो हवाई जहाज ने डिले कर दिया, वो क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लेने ही नहीं जा पाए थे, तो शायद वो कसक खत्म हो गई होगी, और उसके बाद स्वर्ण पदक जीत कर तो हो ही गई, क्योंकि क्या ज़बरदस्त उन्होंने फाइनल खेला तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदी के विरुद्ध। एकदम पीछे थे, किसी को शायद उम्मीद न रही हो कि अब जीत सकते हैं, 7 अंकों का अंतर आ गया था, 1 अंक और चाहिए था विपक्षी को, वहां से वापसी की और 1 के बाद 1 अंक बनाते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में

0: किया।
1: जी एंड वेरी क्विकली टू सम इट अप, अभी भी थर्ड क्वार्टर समाप्त होने में दोस्तों अमूमन 4 मिनट 30 सेकंड ही बचे हैं, और अगर ये क्वार्टर भी गोललेस जाता है तो भारत अपनी एक गोल की लीड बरकरार रखेगा चाइना के ऊपर। चाइना को अभी भी एक गोल करना होगा हॉकी के इस फाइनल मैच में, जो गोल्ड मेडल का मैच हो रहा है भारतीय महिलाओं का हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। तो आखिरी क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि चाइना हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव आए, बिकॉज दे वुड देन वॉन्ट टू एटलीस्ट टाई द स्कोर सो दैट इट कैन गो इन टू शूट आउट, लेकिन वो तो समय ही बताएगा ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आज भारत ये गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहता है तो पहले तो 1982 के बाद अब ये पहली बार होगा जब भारत फिर से एक गोल्ड मेडल लेकर आएगा हॉकी में, और उसके साथ साथ भारत फिर मेडल टेबल में भी दोस्तों 16 गोल्ड मेडल्स की बदौलत हो सकता है कि उज्बेकिस्तान के साथ स्वॉपिंग कर पाए। अभी भी उज्बेकिस्तान के पास 17 गोल्ड मेडल बने हुए हैं, भारत के 15 हैं। भारत को 2 गोल्ड मेडल दौड़ जीतने हैं उज्बेकिस्तान के साथ बराबरी करने में, और उसके बाद विल कम ऑन द फोर्थ प्लेस, बट एटलीस्ट दिस गोल्ड विल डेफिनेटली हेल्प इंडियाज होप्स ऑफ गोइंग अप ऑन द मेडल टैली इंक्रीज। उसके साथ अभी फिलहाल वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ अनुपम पाठक। हम आपसे दोबारा एक बार जुड़ेंगे शाम को 6:30 बजे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। अभी बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है हॉकी का मैच, ऐसा जबरदस्त, यादगार, कभी भी ना भूल पाने वाला मैच। भारतीय महिलाओं ने 1-0 से डिफेंडिंग चैंपियन चीन को परास्त किया, लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया और साक्षी बेकरार है बताने के लिए।
2: ऑफ कोर्स इट्स बीन अ थ्रिलर नेल बाइटिंग एंड टू द मैच शुड आई से, बिकॉज़ इंडिया got the goal very early on in the first quarter itself, but after that the Indian defense stepped up and a beautiful penalty stroke defense that Sabata Punia did for us early part of the game definitely went long way in helping solidify India's chances towards making sure that the defense was all round surrounded the Chinese and never let the China make an entry into the game. China got several penalty corners also, but they could not even convert one penalty corner in their favor. वो 5 पेनल्टी कॉर्नर्स उनको मिले फर्स्ट हाफ के अंदर ही, और फिर भी उसको भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। हमने देखा कि बाय द एंड, जो कहते हैं ना, लास्ट क्वार्टर में चाइना इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था कि दे पुट एवरीथिंग इनटू द अटैक। उन्होंने अपने गोलकीपर को भी बाहर करवा दिया एंड उनकी जगह एक प्लेयर ले आए जस्ट टू गो ऑल इन, लेकिन फिर भी वो वहां पर गोल स्कोर नहीं कर पाए टू लेवल द स्कोर। एज अ रिजल्ट द 44 ईयर ओल्ड वेट, जी हाँ, 1982 में भारत को पिछली बार या आखिरी बार गोल्ड मिला था और आज भारतीय महिलाओं ने ये ड्राउट खत्म कर दिया दोस्तों। दे हैव ब्रोकन दिस ड्राउट आफ्टर 44 ईयर्स टू हेल्प इंडिया गेट दैट कोवेटेड गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स, एंड एज अनुपम जस्ट मेंशन्ड, दिस आल्सो कट्स आवर टिकेट टू द 2028 ओलंपिक्स एंड द बिग वन दैट कम्स आस फॉर अस। A lot of changes, positive changes that we see now in this team. आप ये देखिए, चाइना के पास बॉल पोजीशन भी भारत से ज़्यादा ही रहा, 52% तक चाइना के पास बॉल पोजीशन रहा, लेकिन फिर भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। समाओ हमने आज देखा और एक चीज़ सामने जो आई अनुपम, वो ये थी कि चाइना का हमेशा से ही डिफेंस स्ट्रांग रहा है, अटैक उनका स्ट्रांग पॉइंट रहा नहीं है, लेकिन आज वो पहले से ही पहले क्वार्टर में ही बैकफुट पे आ गए थे बिकॉज भारत ने गोल दाग दिया था। तो आज उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बल्कि अटैक करना ही करना था, और समहाउ इंडिया ने उसके बाद अपने डिफेंस को इतना प्यारा रखा कि चाइना को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो एक एक की बराबरी भी कर सके।
1: दरअसल पूरा मैच अगर आप देखिए तो आज भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ही अलग। चीन को चौंकाने वाली रणनीति उन्होंने बनाई और किस्मत ने साथ ये दिया कि अर्ली गोल आ गया बहुत पहले ही, और क्या जबरदस्त गोल था, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल। लाल रंग सियामी ने किया था, अपना 200वां मैच खेल रही थी आज, और रिवर्स शॉट लिया था उन्होंने डी के भीतर, और उछलता हुआ शॉट, ऐसा शॉट जिसपे शायद बड़े से बड़ा गोलकीपर भी उसको शायद ही रोक पाए। वो जो बढ़त मिली उसके बाद से भारतीय टीम ने अपना गियर ही चेंज कर दिया।
2: Right.
1: चाइना का डिफेंस बहुत अच्छा है, उनका गोलकीपर दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपर्स में है। भारत ने कहा अब हमने ये लीड ले ली, अब हम भले आप हाफ में खेलते रहें या हम पर अटैक करें, हम अपने डिफेंस को एकदम मजबूत कर लेंगे और आपको गोल नहीं करने देंगे। और एक शानदार क्षण और था जब सविता पूनिया ने पहले क्वार्टर में बिच्छू थी गोलकीपर, दूसरे क्वार्टर में गोलकीपर बदला गया, सविता पूनिया को लाया गया और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। देखिए पेनल्टी स्ट्रोक में हॉकी में उसको रोक लेना, और ऐसा रोकना कि अंधा चुक्की नहीं है, वो साफ पता है जैसे उसको कि ये शॉट यहीं आने वाला है, लेफ्ट साइड में मेरे आने वाला है, किनारे आने वाला है, इतना किस तेज़ी के साथ आने वाला है, गजब का डिफेंस। तो शायद भारतीय टीम उसके बाद बहुत जोश में आ गई, और चीन का एंड में आपने बताया इन्होंने अटैक बहुत किया। मुश्किल होता है इस रणनीति पे खेलना कि हम सिर्फ डिफेंड करेंगे, एक बार लीड ले लिया, एक गोल की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती, लेकिन हम लीड आ गई है, हम इसी को डिफेंड करेंगे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, हम 40 मिनट तक डिफेंड करेंगे।
2: Yes.
1: कमाल करके दिखाया आज।
2: Of course, India had their priority straight today. गोल हो चुका है, उसके बाद अपने डिफेंस को इतना स्ट्रांग रखो कि सामने वाली ऑपोजिशन को मैच के अंदर आने का मौका ही नहीं दो, एंड दे जस्ट वेंट ऑल आउट ऑन द डिफेंस एंड वर एबल टू देन कीप दैट लीड मेंटेन टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी लास्ट सेकेंड, एंड देयरबाय हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू ऑल आवर लवली लिसनर्स, because the Indian women's hockey team has brought us that gold after 44 years.
1: आज का छठा स्वर्ण पदक, आज का दिन तो गजब रहा है भारतीयों के लिए पदकों के हिसाब से।
2: Yes, a quick wrap on the medal table also over here. इसके साथ ही आज अब भारत के सारे इवेंट समाप्त हो गए। भारत की पोजीशन अब पांचवें स्थान पर है, जिसमें है उनके पास 16 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 76 मेडल्स। आपको बता दें आज जो मेडल्स आए हैं हॉकी में, हमारे पास एक गोल्ड आ गया।

बॉक्सिंग में हमारे पास 3 गोल्ड आए, रेसलिंग में 1 गोल्ड आया, आर्चरी में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, सेलिंग में 1 ब्रॉन्ज और सेपक तक्रो में 1 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 16 गोल्ड, प्लेसिंग इंडिया ऑन द 5th पोजीशन. दैट इज ऑल दैट वी हैड फॉर यू फॉर राइट नाउ. दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक साइनिंग ऑफ. विल बी जॉइनिंग यू बैक एट द 7:30 अपडेट विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड अ रैप अप ऑफ द डे. थैंक यू सो मच.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर आज की अंतिम अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। और भारत के लिहाज से देखें अगर तो आज की स्पर्धाएं समाप्त हो चुकी हैं और बहुत शानदार दिन रहा है आज, बल्कि अब तक इनके इन एशियाई खेलों में आज का सबसे बढ़िया दिन कहा जाएगा, क्योंकि 6 स्वर्ण पदक आए हैं, 2 रजत पदक आए हैं, 2 कांस्य पदक आए हैं। एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो अभी थोड़ी देर पहले आया है, महिला हॉकी का स्वर्ण पदक, और इसके साथ ही कॉन्टिनेंटल चैम्पियन होने के नाते भारत की टीम जो है, महिलाओं की टीम, उसको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में सीधे प्रवेश मिल गया है। बहुत बड़ी बात है। अब 2 साल होगा भारतीय टीम को तैयारियां करने के लिए मिलेगा, नए कॉम्बिनेशन आजमाने के लिए मिलेगा, यानी पूरी

चाक चौबस्त होकर टीम जा सकती है। जबरदस्त मैच था, भारत ने बिल्कुल अलग रणनीति के साथ खेला। इसके पहले भारत ने गोलों की झड़ी लगा रखी थी पूल के मैचों में, लेकिन यहाँ पर आज चीन की ज़बरदस्त टीम सामने थी। चीन की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको उन्होंने जारी रखा। चीन को बिल्कुल उन्होंने कहना चाहिए आड़े हाथों लिया। अच्छी बात यह रही कि पहले क्वार्टर में ही भारत को मौका मिला, और क्या शानदार, शायद टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल कहा जाएगा, लाल रंग सियामी ने किया। रिवर्स स्टिक से बहुत शानदार रिवर्स शॉट लगाया था उन्होंने, थोड़ा उठता हुआ बिल्कुल गोलकीपर को चकमा देता हुआ पहुंच गया था। उसके बाद से भारत ने अपनी रणनीति यह बदली कि पूरी तरह डिफेंस पे आ गए। इस एक गोल की लीड को, हॉकी में बहुत गोल होते हैं हम सब जानते हैं, उसको उन्होंने लगभग 3.5 क्वार्टर तक बनाए रखा। चीन ने बहुत आक्रमण किए, लेकिन आखिरकार वो फेल होता रहा, क्योंकि भारतीय लड़कियों का डिफेंस बहुत मजबूत था। सुशीला ने बहुत अच्छा किया, नवनीत कौर ने बहुत शानदार किया। कुल मिलाकर स्थिति यह आ गई कि आखिरी के करीब 4 मिनट तो गोलकीपर को ही हटा दिया गया, यानी 11 के 11 खिलाड़ी आक्रमण करेंगे, चीन के लिए गोल आए, तब भी भारतीयों ने आपा नहीं खोया, सिर्फ एक मूव बनाया, उनको समय बिताना था, वो 3.5 मिनट। शानदार मैच रहा हॉकी का। स्वर्ण पदक अब देखना है, कल भारत की टीम भी पुरुषों की वो भी स्वर्ण पदक लेकर आए तो खुशी दुगनी हो जाएगी, पदकों की जोड़ी बन जाएगी। इसके पहले आज बहुत शानदार दिन बॉक्सिंग में रहा, लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता, एशियन गेम्स का अपना ये पहला स्वर्ण पदक उनके लिए था, मणिपुर की हैं। शानदार तरीके से उन्होंने आज अपनी फाइट लड़ी, बाउट लड़ी, 5-0, तीनों राउंड में लगातार उन्होंने प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरा परवीन हुडा का स्वर्ण पदक था, थोड़ा मुश्किल से आया, 3-2 का स्प्लिट डिसीजन था, लेकिन परवीन जैसी आक्रामक वो खेलती हैं बिल्कुल वैसी रही, ताइपे की नीन चिन येन के विरुद्ध थी, और उन्होंने भी दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। तीसरी बाउट में अंकुश पंघाल थे, हरियाणा से ही आते हैं, सेना में नौकरी करते हैं। अंकुश पंघाल ने अपने ऊपर काबू रखा, अपने स्टाइल को बिल्कुल नहीं चेंज किया, वो साउथ पा हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मुक्के बरसाए और उन्होंने भी इस बाउट को जीतकर भारत के लिए बॉक्सिंग में आज का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया 80 किलोग्राम में। आर्चरी में भारत की महिला टीम ने अंकिता भगत, कुमकुम महोद और कीर्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक पाया, और सिल्वर आया मिश्रित में धीरज देवोमरा और कुमकुम महोद के साथ, और इसके अलावा धीरज, यशदीप भागे और नीरज चौहान की जोड़ी ने ईरान को परास्त करके पहले प्रवेश किया फाइनल में। वहां पर दक्षिण कोरिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, उससे वो परास्त हुए, लेकिन रजत पदक पाया। कुश्ती में बहुत खास दिन रहा, इसलिए दीपांशी की पहले बात कर लें, बहुत नई लड़की है, बिल्कुल उभरती हुई लड़की है, 50 किलोग्राम भार वर्ग में वो पहली अपनी बाउट जापान की सुशाई यूई से हार गई, लेकिन उसके बाद उनको रिपेचेस में मौका मिला, उन्होंने अपनी बाउट जीती, ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला किया, लेकिन कजाक की जिनेब बायानोवा से परास्त हुई। उसके बाद 65 किलोग्राम वर्ग में अकल्पनीय चीज़ करके दिखाई सुजीत कलकल ने, 2-9 से पीछे होने के बाद भी, यानी बिल्कुल हर एक को लगने लगा था ये बाउट तो गई, ये कुश्ती तो सुजीत के हाथ से गई और स्वर्ण पदक तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने क्या वापसी की है। कहते हैं ना, एकदम जब बिल्कुल आप एकदम कोने पर पहुंच गए हैं, गिरने वाले हैं, कगार पे आ गए हार के, वहां से उन्होंने वापसी की, लगातार 8 अंक कमाए, और सुजीत कलकल का ये स्वर्ण पदक बहुत बहुत दिनों तक बहुत याद रहेगा। इसके अलावा और भी भारत की ओर से बहुत अच्छी कुछ प्रदर्शन रहे हैं। सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने डिंगी में, उन्होंने जो पहले कहलाती थी लेज़र रेस कहाया करती थी ICLA की स्पर्धा, उसमें उन्होंने कांस्य पदक पाया। सिपक टोकरा में भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिन रहा है भारत के लिए। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कल क्रिकेट का मैच है, फाइनल मैच है पाकिस्तान के विरुद्ध। हॉकी में मलेशिया के विरुद्ध पुरुष की टीम उतरेगी। आर्चरी में कुमकुम महोद, धीरज देव बुमराह और नीरज चौहान कोशिश करेंगे स्वर्ण पदक पाने की। कुश्ती में 5 पहलवान हैं, सागर जगलान, अंतिम पंघाल, अमन, दीपक पुनिया, मनीषा। इसके अलावा गोल्फ में प्रणवी क्या करती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं भारत के लिए। R7, Rugby 7, ताइक्वांडो और वॉलीबॉल में भी होंगे। भारतीय टीम बहुत अच्छे स्थान पर आ गई है, 5वें स्थान पर आ गई है, 16 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 35 कांस्य पदकों के साथ 76 पदक लेकर 5वें स्थान पर है। तो अब आपको ये बताते हुए कि हम कल फिर हाजिर होंगे 9:30 बजे अपने इस अपडेट की श्रृंखला के साथ। अब

0: गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Welcome to our daily highlights from the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya. I am Megha. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
2: Mahila hockey ke final mein aaj Bharat ki ladkiyon ne ek bahut bada karnama kar dikhaya aur unke liye taaliyan hi taaliyan. Jitni bhi bajaiye kam hai. Cheen ko 1-0 se hara kar swarn padak apne naam kiya aur Los Angeles Olympic mein pratibhagita pakki kar li continental champion hone ke nate. Bharatiya hockey premiyon ke liye ek bahut tanav bhara khoon jamane wala romanch se bhara hua match tha ye. Pool level pe goal dagne wali ladkiyon ne mazboot team ke virudh रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर।

0: के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का। और जैसे ही हूटर बजा, लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे, और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next on to the wrestling mat. And this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories. And one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया, बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़साई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चलें, सुजीत साल 2026 में अब तक अजय हैं। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडित काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. 3 Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all 3 emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
2: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की। अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाऊ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादी मोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के

0: फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया की तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's squadron teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: सिपक टोकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगु स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाइबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष युमनाम, और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और लोखोन सिंह इलांगबांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9 की बराबरी पर ले आए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने अंतिम समय में बढ़त बना ली और दूसरे में तो जापान ने शुरू से ही लीड ले ली थी। एक समय 12-8 से जापान आगे हो गया था, लेकिन भारतीयों ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया और स्कोर 12-13 पर ला दिया, यानी अंतर सिर्फ 1 अंक का। मुकाबला कहीं भी जा सकता था, लेकिन निर्णायक मौकों पर उनसे हुई चूक और जापान ने मौकों का फायदा उठाया, 15-13 से सेट और मैच जीत लिया। भारत ग्रुप में अपराजय रहकर सेमीफाइनल में पहुंचा था और ये भारत का क्वाड्रेंट स्पर्धा में पहला पदक है और एशियन गेम्स के इतिहास में सेपक टोकरा में कुल मिलाकर 3रा पदक। सेपक

0: நேர்களை, நமது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் மத்திய அலை 1197 கிலோஹெர்ட்ஸின் இன்றைய ஒலிபரப்பு இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. எமது அடுத்த ஒலிபரப்பு நாளை காலை 5:50 இதே அலைவரிசையில் இனிதே ஆரம்பமாகும். நிகழ்ச்சிகளை பண்பலை 102.6 MHz தொடர்ந்து கேட்கலாம்.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
2: Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं. आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया. विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत.
1: वेलकम विशाल.
3: धन्यवाद. धन्यवाद अमरीश जी. थैंक यू राजेश.
2: और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख.
1: यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल कॉल्स फॉर WTO कंप्लायंट अप्रोच टू एड्रेस ग्लोबल ट्रेड डिस्टॉर्शंस एट G20 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग. Asian stock market indices close mixed and global crude oil prices decline.
2: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए WTO आधारित नियमों के पालन का आह्वान किया. एशिया के शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा और तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई.
1: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to our first story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity in production, Mr. Goyal said, India is the fastest growing large economy in the world with a domestic demand driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. Mr. Goyal said India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. How do you evaluate what the Commerce and Industry Minister has called upon the WTO compliant approach so that the global trade distortions can be corrected?
3: Well, this is really important, Rajesh, because India, in all matters, be it trade, economy, or diplomacy, and even conflicts as well, has maintained one consistent stand, and that is that the international rules, the international orders, must be abided.

0: It must be followed. When it comes to trade, WTO, of course, is the guiding authority. You know, everybody, all countries do respect the guidelines which are there from the WTO, and going against them will, of course, create a imbalance within the economic system as well. And that is where, you know, the entire crisis of dumping and trade distortions comes into effect. And this is really important right now as well, because given the constraint which is there right now on the global supply chains because of the ongoing conflicts, both in the European theater and the Middle Eastern theater, this becomes really important, because there will be economies, there will be countries which will not be able to withstand these kind of economic onslaughts if they continue for long in such conditions.
1: Concerns about dumping and also about the predatory pricing as well.
0: Yes, indeed. That's what I'm saying. So in the present situation, wherein the smaller economies are already trying to stay afloat in the face of rising energy prices, in the face of undue pressure on global supply chains, and a lot of uncertainty as well in the trade and economy aspect globally, given the fact that the world powers, so-called economic world powers, are changing the rules of the games almost on a daily basis, if not a weekly basis. Statements coming in, they change a lot of stuff. So in that situation, it is imperative for everybody, all the countries specifically, to adhere to these principles which are already in place, so that the troubles for the lesser economically fortunate countries, or the developing economies, are not under undue duress or pressure.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई. फ्रांस के विदेश मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाना है. विशाल जी, आप क्या कहेंगे, G20 के साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं भारत की तरफ से की जा रही हैं, जैसा कि अभी खबर में हमने देखा फ्रांस और कनाडा के साथ ख़ास तौर पे. इससे भारत का जो अभी व्यापार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, उससे भारत को किस तरह का लाभ पहुंचने की उम्मीद है?
0: देखिए, भारत ने बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक बेहतरीन आर्थिक रणनीति यहाँ अपनाई है. और आर्थिक मामलों में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेड के लिहाज से, यानी कि व्यापार के लिहाज से, आप जितने ज़्यादा देशों के साथ अलग अलग तरीके से अपने समझौते बना पाएँ, अलग अलग तरीके से उनसे बातचीत करके उनका फ़ायदा और अपना फ़ायदा दोनों एक देख पाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है. जो मल्टीलेटरलिज्म जिसे कहा जाता है, उससे इतर जाके अब थोड़ा सा बायलेटरल कोऑपरेशन जो है उस पर जोर ज़्यादा है. इसीलिए FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर जैसे कनाडा के साथ CEPA जो बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस तरह के एग्रीमेंट्स पे चर्चा और इस तरह के एग्रीमेंट को मूर्त रूप देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पिछले 3 से 4 साल में हमने देखी है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उस पर ज़्यादा मोमेंटम हुआ है. कनाडा से बातचीत अभी जारी है, उसमें अलग अलग और किस तरह की उसमें जमाया घटा किया जा सकता है उस एग्रीमेंट में. उसके अलावा चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, या फिर और यूरोपीय जो बाकी देश हैं उनके साथ हो, ब्रिटेन के साथ हमने एक समझौता किया, और भी ऐसे कई देश हैं.

0: और अमेरिका के साथ एक अलग समझौते पे लगातार बातचीत चल रही है। उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ पर ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। तो ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि हर इस वक्त आज की स्थिति में
1: जी
0: हर इकोनॉमी की तरह, हर देश की तरह भारत भी ये चाहता है कि उसके ऑप्शंस खुले हों, उसके विकल्प खुले हों, और उसकी जो जो व्यापारिक संगठन हैं या देसी कंपनियां हैं जिन्हें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कहें या हमारी जो बड़ी कंपनियां वो कहें, उन्हें और बेहतरीन मौके मिलें और हमारे देश में जो कंज्यूमर बैठा है उसको केवल बाजार के तौर पे न देखा जाए बल्कि उसे भी बेहतरीन क्वालिटी वाले विकल्प चुनने को मिले।
1: जी और अगर ख़ास तौर से हम यूरोपीय यूनियन की बात करें, जो भारत के साथ समझौता जो FTA हुआ है, उसके क्या क्या आपको भारत के पक्ष में क्या परिणाम दिखाई देते हैं?
0: देखिए, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा संगठन है और सीधे तौर पर अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ FTA करते हैं तो यानी कि EU के अंडर आने वाले जितने भी देश हैं वो बाध्य होते हैं उस समझौते को मानने के लिए। अलग अलग देशों का अपना अलग अलग जिसे कहा जाए एक्सपर्टीज़ है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज़ है, कहीं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ है, किसी के पास साइंटिफिक जो R&D जिसे कहा जाए उसमें वो आगे बढ़कर काम कर रहा है। फ्रांस जैसे देश हैं जिनके साथ हमारा रक्षा समझौता अलग से है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में बल मिलता है और ना केवल भारत का जो कंज्यूमर है उसे, या चाहे कंज्यूमर में आप चाहे सरकार मान लें या हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी माने क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा एक रक्षा समझौता है, बल्कि हमारी जो कंपनियां हैं उनके लिए बाजार एक नया बाजार खुलता है। उनको अपने जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं यानी कि अपनी गुणवत्ता को सुधारने के बाद बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अपनी एक पहचान बनानी है उसके लिए एक अलग बाजार मिलेगा, अलग मौका मिलेगा। केवल ये नहीं माना जा सकता कि आप अब सामान, अगर आपकी कंपनी का सामान अगर अमेरिका में बिकता है तो ही आप बड़ी कंपनी हैं। तो अगर उसके लिए विकल्प ज़्यादा खुलते हैं तो यानी कि मौके ज़्यादा मिलेंगे कंपनियों को और उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को।
1: UKPM has also indicated rather signal that he would like to join the EU. The country might, and we already have an agreement with UK, and that is going to be a feather in our cap.
0: Well, it's going to be really interesting as well because you know that's a separate battle of wits which is going on there.
1: Yeah.
0: Because let's not forget that this was one particular topic on which the United Kingdom was almost split in between, and this time around perhaps they're taking a turn around because of their internal domestic politics as well, because there are two parts of the kingdom perhaps which have not been in favor since day one, and seemingly they're still not in favor as well. So domestic issues, domestic pressures do tend to make international calls being made by sometimes leaders of the free world as well. Let's see how far the British Prime Minister can push this through.
1: So, and the minister is also focused quite a bit on the India-EU free trade agreement and also SEPA. He wants these to be expedited.
0: That's
1: rightfully so, because
0: yes indeed, and it serves the purpose for both. When we talk about SEPA, it serves the purpose for both India and Canada, because let's not forget that the Canada was also on the short end of the stick when President Trump was going around brandishing his tariff stick. So and there was a lot of not so healthy exchange of words between both sides, so of course Canada would also want to go ahead and hedge its bets. That's one. And two, look for more sustained partnerships with perhaps more larger markets. That's one from their angle. And two, of course, they would also want to be there on the table and say that, okay, fine, if it's not going our way, then we have somebody else to fall back upon. And in current economic scenario, I think apart from China, India is the other market to fall back upon.
1: और चलते हैं, शेयर बाजार का हाल भी जान लेते हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर शेयर इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार नहीं हुआ। बाजार सोमवार को फिर खुलेंगे। अवकाश से पहले बेंचमार्क सूचकांकों पर लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा और इनमें लगातार 8वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। इस अवसर पर आज भारतीय मुद्रा बाजार भी बंद रहे। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 96 रुपये

0: 31 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। विशाल जी, आप क्या कहेंगे? आज हालांकि शेयर बाजार बंद है, लेकिन लगातार 8 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव बना हुआ है और गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट को आप सिग्निफिकेंट तो है, बट देन इसका इम्पैक्ट किस तरह का आप देखते हैं?
1: देखिए, आंकड़ों को दो तरीके से देखा जाता है। हर बार जब हम इस कार्यक्रम पे आंकड़ों पे चर्चा करते हैं, और मैं हमेशा आंकड़ों के आधार पे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि लेकिन आंकड़ों को देखने का भी अपना नज़रिया है। अब अगर गिलास को आप देखें तो आधा गिलास खाली भी हो सकता है और आधा गिलास भरा भी हो सकता है। निश्चित रूप से जो आंकड़े आपने अभी बताए और जो आंकड़े जिन पर चर्चा भी की जा रही है, जिन पर लिखा भी जा रहा है, वो दुरुस्त हैं। यानी कि लगातार 8 हफ्ते तक बाज़ार में गिरावट दर्ज की गई, और ऐसा लगभग 2 दशक के बाद ऐसा देखने को मिला है। लेकिन वो गिरावट कितनी है? नंबर एक, वो गिरावट लगभग 9% के आसपास है अगर मोटे तौर पे देखें तो। हाँ, इसमें ये भी सच है कि 52 वीक हाई, यानी कि पूरे 52 हफ्ते का जो सबसे ऊंचा आंकड़ा था, उससे आप बहुत नीचे आ गए हैं। लेकिन अब इनके कारणों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान डालें तो समझ में आएगा कि क्या कोई नया फैक्टर ऐड हुआ है। जी नहीं, ये सब वही फैक्टर हैं जो लगभग पिछले एक साल से इन सभी फैक्टर से बाजार जूझ रहा था, चाहे वो FII का आउटफ्लो हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो जिसे कहा जाए हम सिग्नल्स जो आते हैं, इंटरनेशनल सिग्नल्स जिसे कहा जा सकता है, मार्केट को क्यूज मिलते हैं, जो क्रूड ऑयल की कीमतों की हम बात करें, उसमें जिस तरह से कोई स्टेबिलिटी नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ दिनों के लिए ऊपर जाती हैं, और अगर वहाँ माहौल थोड़ा सा शांत रहता है तो कुछ दिनों के लिए नीचे आती हैं। यानी कि कोई एक सस्टेन्ड क्यू मार्केट को नहीं मिल रहा था, नंबर दो। और नंबर तीन अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे जैसे अब मोटे तौर पर कल से जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े उनमें सब में ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अगर आंकड़े देखें तो उनमें उनके आंकड़े, उनकी जो बिकवाली है, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स की जो बिकवाली है, सेल जिसे सेल के आंकड़े से कहें, वो तो बहुत ऊपर गया, लेकिन जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं थे जिस एक्सपेक्टेशंस पे शायद इन्वेस्टर्स चाहते थे। दूसरा, अगर वापस हम FII की तरफ जाएं तो वहाँ भी एक थोड़ी सी डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी इसलिए है कि सितंबर के महीने में लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बाजार से FII ने निकाला, यानी कि इक्विटी बेच कर निकाला, लेकिन प्राइमरी मार्केट में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उन्हीं FII ने इन्वेस्ट भी किया। अब वो इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि US की जो बॉन्ड मार्केट है वहां उनको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर कहा जाएगा कि इक्विटी मार्केट से क्यों हटाया गया, तो हो सकता है, और हो सकता है कि ये आंकड़े भी बताते हैं कि जो लार्ज कैप जो है हमारे भारत के बाजार में, उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन्वेस्टर्स चाहते होंगे। तो ये पैसा लगाना और पैसा निकालना ये बाजार में निरंतर लगा रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। इसलिए मेरा कहना है गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये अपने नज़रिए पर निर्भर करता है, और ये आपके रिस्क एपेटाइट पर भी निर्भर करता है कि आप किस हद तक होराइजन की किस हद तक आप देख पाते हैं।
0: सो देयरफॉर विशाल, व्हिच डोमेस्टिक ट्रिगर्स शुड इन्वेस्टर्स वॉच आउट फॉर this next week? The RBI policy and its commentary, the FPI flow data, early Q2 earnings signals, or the macro data as you elucidated quite a bit on them. So what should I look out for while I'm thinking of investments next week?
1: When you talk about macro data, all of these are the factors. You can't overlook either of these factors. That's one. But two, if you're an investor, what are you looking out for? You're looking out for investing in a particular company, in a scrip, in a small cap company, in a mid cap company, in a large cap company. Somewhere you're looking to invest. So the larger part which you should look out for is to look for that particular company's financial health. That's one. Its capacity building. That's two. Its future horizon. That's three. And what does the sector say? The particular sector to which the company belongs. What do the policies say? All the other larger data is creating a larger picture. But we are not investing into the larger picture as investors. We small investors, retail investors. I'm looking at from their perspective. I'm not looking at from FII's perspectives here. So I should be looking as an investor to the individual script which I'm going to invest in, and then take a concerted decision, because ultimately the entire atmosphere which is being created, that will of course affect my investment, but that will of course affect the investment of the entire market as well. Largely what will affect my investment more is whether the company which I have invested in has the potential to grow, has the wherewithal to grow,

0: does its management has the willpower to go ahead and take those calls which need to be taken in that particular sector.
1: Okay. Now, very important is that the key concern for the market is, I believe, not oil pressure alone, but the combined pressure from elevated bond yields, tight global liquidity, and the geopolitical uncertainty. While softer crude prices, Vishal, can improve, shipments can be constructive, higher yields raise the cost of capital, compress equity valuations, and make fixed income assets relatively more attractive. So how should I react when I talk about the elevated bond or look at the elevated bond yields?
0: I think this can be answered in just two, three sentences, because the bond yields is something which is a larger game played well beyond the control of even the markets as well, because there are larger economic interests of specific countries which are involved, which then drive the bond yields of either on this end or on that end as well. We should be on the lookout, be concerned about it as well. But that's not the only factor. So, of course, we should not be very worried about it unless we are, unless somebody is a huge FII investor and perhaps maybe, moving
1: should
0: in and
1: I
0: out.
1: Should I be worried about FIIs leaving?
0: Not at all.
1: 26,000 crores is what they took out till yesterday.
0: Not a big picture, I must tell you, because, in the past, there have been days wherein 30,000 crore rupees have moved out of the market. Next day, 25,000 crore rupees have come in.
2: और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग 2.6%, जापान का निकेई 0.9% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% नीचे रहा. वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और ताइवान का ताइएक्स 0.2% चढ़ा. इस बीच अवकाश के कारण चीन के बाजार बंद रहे. विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे एशिया और यूरोप के बाजारों की जो आज की परफॉर्मेंस है उसके बारे में?
0: देखिए, मिश्रित नतीजा है और मैं कहूँगा कि ना ही तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद से बढ़ के है किसी मार्केट में और ना ही उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है. हालांकि अमेरिकी बाज़ार का जो रुख है वो थोड़ा पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि वहाँ से हो सकता है कि सोमवार को जो है मतलब कुछ क्यू भारतीय बाज़ारों को भी मिले और ख़ासतौर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं जिनमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है अमेरिकी बाजार में और फेडरल रिजर्व का जो हाल ही का जो फैसला था वो और थोड़ा सा जो एक प्रेशर जो बन रहा है वहाँ पे, क्योंकि अभी भी वहाँ के एनालिसिस के मुताबिक लगभग 25-30% उम्मीद ये है कि जो अक्टूबर में एक बार फिर से फेड की बैठक होगी तो उसमें फिर थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो सकती है जो ब्याज दरें हैं उनमें. तो ये सब क्यूज हैं जिनका बेनिफिट मिल सकता है. बाकी निक्केई, हैंगसेंग और कॉस्पी, इन सब में जो चल रहा है वो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है प्लस और माइनस में, तो ये माना जा सकता है कि सब ठीक है, नजर बनाए रखें.
1: जी, मूविंग ऑन, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड शार्पली टुडे. Brent crude was trading 2.6% down at $99.64 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 4% lower at $89.13 per barrel at the time of writing this report. Vishal, India imports most of its crude.
0: Yeah, approximately more than 80%.
1: Yeah. So how does a $10 move in oil mean for inflation, the current account deficit, or the GDP growth?
0: It's a huge number to add if you look at it that way. But then there are countermeasures also which are always put in place. The Indian oil marketing companies do absorb most of the shock, as the government has pointed out time and again. But to what extent and up till what level will it happen? Because just recently, the ATF prices and the commercial LPG prices were increased. So slowly, the pressure on these oil marketing companies also need to be released. They can't always, foot the bill. But yes, these numbers might seem small, but given, if you take a look at the larger bill, it looks like it's pretty huge.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचा इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा. इसके तहत ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगेगा. भुगतान शुल्क को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक खबरों के बीच सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपुष्ट संदेशों को आगे न भेजें. नागरिकों को सलाह

0: गई है कि वे जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
1: Country's foreign exchange reserves declined $18.3 billion to $747.5 billion during the week ended 25th of September. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, dropped by $15.5 billion to $615.4 billion during the week. Gold reserves dropped by $2.5 billion to $108.7 billion. Special drawing rights fell by $97 million to $18.64 billion. Country's reserve position with the International Monetary Fund dipped by $86 million to $4.8 billion. Vishal, how do you see this? Very, very briefly.
2: Well, again, this is cyclical because, you know, you're looking at this data. When you say fell by, then of course we're looking at what the last figure was. But then the last figure was much higher than what the previous last figure was.
1: Okay.
2: So let's look at it in context also.
0: और कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का पांचवां संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार तीन दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुड़ेंगे। इसमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
1: The government has reduced the stock holding period for sugar dealers to 15 days and fixed the stock holding limit at 1,000 quintals with effect from 15th of this month. It will remain effective till November this year. Consumer Affairs Ministry said that the government has revised the sugar stock holding norms to prevent hoarding and ensure smooth supply to consumers during the festive season.
0: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: Thank you, Vishal, for being with us. And before we close, the headlines once again. Union Minister calls for WTO-compliant approach to address global trade distortions at G20 trade ministers' meeting. Asian stock market indices close mixed and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में कल विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गई। GDPDP पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर 2.42 लाख से ज्यादा विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। शिपिंग कॉरपोरेशन के कामकाज के 65 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री सोनोवाल ने भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को बनाए रखने में शिपिंग कॉरपोरेशन की भूमिका पर जोर दिया। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने तरन तारण सेक्टर में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षा कर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, इसलिए BSF को गोली मारनी पड़ी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Mchar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Mchar for taking a split-second decision that helped save the

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஆசை, இளையராகம் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 70

0: वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भी भक्ति गीत गाए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 3 ऑपरेशन में बारीकी से नक्काशी की गई हाथी दांत की 4 चीजें, 1 तेंदुए की खाल, 2 जिंदा पेंगुलिन, 3 किलो बाघ की हड्डियां और बाघ के 2 केनाइन दांत जब्त किए हैं। इन 3 ऑपरेशन में 11 लोगों को पकड़ा गया है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना गोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Mchar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Mchar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मैं आपसे सुनना चाहूंगा,
3: मेरे लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த இந்த நிகழ்ச்சி 100.1 FM கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की. श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं. श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई.
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ.
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे. पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की. उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं. प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है. श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात की. श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है.

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए चल रहे तस्करी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एयरपोर्ट का एक कर्मचारी, 6 ट्रांजिट यात्री और विदेश जाने वाला एक भारतीय यात्री शामिल है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाज के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। आज लक्षद्वीप, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smit Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for a WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand driven economy.

0: सिर्फ एक रुपए में। हर शुक्रवार होगा एक नई मूवी का प्रीमियर बिना किसी एड ब्रेक। 16 नवंबर के बीच
1: मंगवाओ और लगाओ, दर्द से छुटकारा पाओ।
2: चाहे आपकी उम्र जो

0: अभी आप विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल सुन रही थी।
1: शुक्रिया। अब मैं एक छोटी बहर की गजल हल्की फुल्की सी पेश करता हूँ, गौर फरमाइएगा।

नए साल के मौके पर मैंने ये गजल गाई थी जिसे फरमाइश पर पेश कर रहा हूँ। कलाम डॉक्टर बशीर बदर साहब का है।

0: 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் ஷர்மிஸ்தா சென் அவர்களின் சிதாரிசையும் அதனைத் தொடர்ந்து தலத் தாசிஸ் அவர்களின் பாட்டு கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की. श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की. प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं. श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी.
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ.
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे शामिल थे. पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की. उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं. प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है. श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही. श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है. पंजाब में सीमा सुरक्षा बल ने तरन तारण सेक्टर में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया. आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी. तैनात सुरक्षा कर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, इसलिए BSF को गोलीबारी करनी पड़ी. भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिशूल 30 सितंबर को स्पेन के वालेंसिया बंदरगाह पहुंचा. ये भूमध्य सागर, अटलांटिक और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में उसकी तैनाती का हिस्सा है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान INS त्रिशूल स्पेनिश नौसेना के साथ क्रॉस डेक भ्रमण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा. पाकिस्तान सरकार और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के नेताओं के बीच आज फिर बातचीत होगी. PTI नेताओं के इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले मतभेदों को सुलझाने के लिए सरकार से कल बातचीत हुई थी. जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है. कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते. इनमें महिला हॉकी, कुश्ती,

0: और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाज के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और मोहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर्स बहुत गर्व फील हो रहा।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest-growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, yesterday called on the Shipping Corporation of India to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark SCI's 65 years of operations, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy and trade security, particularly during the recent Strait of Hormuz crisis. He said, a stronger national fleet is central to India's ambition of becoming a leading shipbuilding and ship-owning nation by 2047 under Maritime Amritkal Vision 2047.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार के उपचार का प्रबंध करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवाकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने तरनतारण क्षेत्र में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षाकर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे, इसलिए BSF को गोलीबारी करनी पड़ी। भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिशूल 30 सितंबर को स्पेन के वालेंसिया बंदरगाह पहुंचा। यह भूमध्य सागर, अटलांटिक और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में उसकी तैनाती का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान INS त्रिशूल स्पेन की नौसेना के साथ क्रॉस डेक भ्रमण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य संवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है।

0: जापान में एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound fly-Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मैं अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanan Sonowal, yesterday called on the Shipping Corporation of India to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark SCI's 65 years of operation, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy and trade security, particularly during the recent Strait of Hormuz crisis. In Punjab, Border Security Force BSF has neutralized 2 Pakistani intruders yesterday in Tarantaran sector. Quoting BSF sources, Akashwani correspondent reports that they illegally crossed over to the Indian side of the border. Despite giving warnings by the deployed security personnel to stop, they continued advancing, forcing BSF to open fire. Directorate of Revenue Intelligence, DRI, has seized 4 elephant ivory articles, including intricately carved ivory articles, 1 leopard skin, 2 live pangolins, 3 kg tiger bones and 2 tiger canines in 3 intelligence-led operations. 11 persons have been apprehended in the 3 operations. Ministry of Finance said that in the operation targeting illegal trade in elephant ivory, DRI officers conducted a decoy operation. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 6 gold medals in hockey, boxing,